0: 9:13 a.m. DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
10: बालियां अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स 1-1 Oak Lane BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
13: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
12: बस ट्रक फोकलिफ्ट
14: टैक्सी लाइसेंस,
12: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
13: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
13: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
12: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
13: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

وهم له من

0: 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
13: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
12: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
13: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
13: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
12: 01274201679। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274 414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: On 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड।
11: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan?
3: Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
11: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
13: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 13am, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी चाहे बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014।
9: सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: الكافرين الذين كفروا لهم.
1: On 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: Sheffield Mellor CIC presents DesiFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
7: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
7: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
4: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
7: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
4: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
7: 07548419678।
4: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
1: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
13: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

बस मेरा रंग भी नहीं ते मेरा रूप भी नहीं। मेरी जामी वर्गी तो

0: On 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
12: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
11: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
13: टैक्सी लाइसेंस,
11: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
12: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा, पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
12: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड,
11: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
12: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: Na main ajami, na hindi, na iraqi o hijazi, ke khudi se maine seekhi do jahan se beniyazi. Tu meri nazar mein kafir, main teri nazar mein kafir. تیرا دین نفس شماری میرا دین نفس گدازی

0: 14:13 a.m. DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है,
3: मैं निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
12: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world, Bradford Asian Radio, our voice, your choice.
13: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

Oh,

0: 14:13 a.m. DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स। व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 13:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
8: हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड
8: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: बरकत है लिपटे
1: On 1430 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
7: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग।

0: 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. You're listening to Bradford Asian Radio.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping, featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. This is Bradford Asian Radio.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काकी की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
13: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
12: बस ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
13: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
13: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड,
12: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian Radio. Bradford Asian Radio.

0: on 1413 AM, DAB+, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan?
3: Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. This is Bradford Asian Radio.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. This is Bradford Asian Radio.

You're listening to Bradford Asian Radio.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
3: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
0: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. You're listening to Bradford Asian Radio.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
12: टैक्सी लाइसेंस,
11: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
11: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. This is Bradford Asian Radio.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काकी की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 Footland ब्रेडफोर्ड PD95BR 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटल लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
10: UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट दिलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही दिलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260 078

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: अगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: जी नहीं करते, कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: You're listening to...

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं हमारी साथी
1: जी, मैं हूं सना, आपकी होस्ट आज के लिए। आप सुन रहे हैं हमारा ब्रेफोर्ड एजेंट रेडियो। हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306677। अगर आपको हमें कॉल करके एक अच्छा सा गीत लगवाना चाहते हैं या आप शेर व शायरी सुनाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपना गीत हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं 07800599563 पर।
2: और रेडियो में तड़का लगाने आपके साथ जुड़ी है तरन भी, एंड होप आपको मैं अच्छी लग रही होंगी, आपको मेरी उर्दू समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज बातें करते हैं जिंदगी पे, अकेलेपन पे। आइए जुड़िए हमारे साथ, कॉल कीजिए, शायरी कीजिए।
0: और अब यूं करते हैं कि हमारे पहले सामने टेलीफोन लाइन पे आ चुके हैं, इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: जनाब क्या हाल है, ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? ठीक है,
3: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, सब ठीक है।
0: जी जी जी।
3: तो आपके मेहमान आए हैं, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत आदाब। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
3: जी शुक्रिया। तो तमाम सुनने वालों को भी मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जिनमें खालिद अली मीर साहब, अली भाई है, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब, महबूब इलाही है, नवीद भाई है, हमारे उस्मान भाई अगर सुन रहे हो, सादिया बहन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: आपको भी वालेकुम अस्सलाम, सभी सुनने वालों की जानिब से आपको भी अस्सलाम।
3: शकील है कतील शिफाई, उनकी गजल है
0: माशाल्लाह। मैंने सोचा आप कह रहे हैं कि शकील की है, आपकी अपनी। जी जी, कतील की सुनाइए।
3: शिफाई
0: जी जी।
3: कुछ राहतों की खोज में आई थी जिंदगी।
0: हाँ हाँ, कुछ राहतों की खोज में आई थी जिंदगी,
3: देखा तो एक लहद में समाई थी जिंदगी।
0: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत
3: क्या क्या क्या न एक शख्स ने रखी संभाल कर,
0: क्या क्या न एक शख्स ने रखी संभाल कर,
3: मालूम अब हुआ के पराई थी जिंदगी।
0: क्या कहने, मालूम अब हुआ के पराई थी जिंदगी। क्या शेर है,
1: क्या बात है, बहुत
3: गुड। हो जाए रेजा रेजा लगे जब जरा सी ठेस,
0: हो जाए रेजा रेजा लगे जब जरा सी ठेस,
3: क्या सोच के खुदा ने बनाई थी जिंदगी।
0: क्या कहने, क्या कहने, क्या शेर है, वाह वाह वाह वाह।
3: था दुश्मनों के वास्ते ये इबरत का मकाम,
0: था दुश्मनों के वास्ते इबरत का ये मकाम,
3: कंधे पे दोस्तों ने उठाई थी जिंदगी।
0: क्या कहने,
1: क्या बात,
0: क्या कहने, वाह वाह,
3: शुक्रिया। वापस गई अदम की तरफ खाक ओढ़ कर, वापस गई अदम की तरफ खाक ओढ़ कर, सांसें पहन के दहर में आई थी जिंदगी।
0: क्या कहने, आते हुए अजां हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए चले गए।
3: उड़ता हुआ वो एक परिंदा है अब कहां,
0: वाह वाह,
3: उड़ता हुआ वो एक परिंदा है अब कहां, अपनों परों पे जिसने सजाई थी जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत
3: खूब। देखा कुमार खानाए हस्ती में जब कतील,
0: वाह वाह,
3: देखा कुमार खानाए हस्ती में जब कतील, दाव पर हर्ष बशर ने लगाई थी जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत
1: खूब, बहुत अच्छा,
3: तो शुक्रिया। तो एक अनवर फरीदी की गजल है।
0: क्या कहने, जिंदगी के हवाले से आपका लाजवाब और हस्ब आल इंतखाब के लिए आपका बेहद शुक्रिया शकील साहब।
3: अनवर फरीदी फरमाते हैं, वक्त ये हम पर भी गुजरा जिंदगी,
0: वाह वाह,
3: वक्त ये हम पर भी गुजरा जिंदगी, तुझको भी बस में न पाया जिंदगी।
0: बहुत
3: कर्म है तू, दर्द है, आजार है, बारहा तुझको है परखा जिंदगी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: कत्ल हमको कर दिया हालात ने,
0: कत्ल हमको कर दिया हालात ने,
3: तुझको किसने मार डाला जिंदगी।
2: वाह, ये मेरी फेवरेट है,
0: ये देखें तरन ने भी आपके
2: दिल आ गया, इस पे मेरा दिल आ गया।
1: दोबारा से बोल दे
2: एक बार फिर से,
3: तुझको किसने मार डाला जिंदगी।
0: हाँ हाँ,
3: वक्त ने सबके कशाएं छीन ली,
0: हाँ हाँ हाँ,
3: वक्त ने सबके कशाएं छीन ली, अब अंधेरों में है तनहा जिंदगी।
0: वाह वाह,
1: बहुत खूब।
3: रेजा रेजा हो गया मेरा बदन, रेजा रेजा हो गया मेरा बदन, तूने इतना मुझको पहना जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: मौत आएगी सहर के हाथ से,
0: मौत आएगी सहर के हाथ से,
3: रात है दुनिया सितारा जिंदगी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: थी कभी गुलशन मगर अब हो गई, थी कभी गुलशन मगर अब हो गई, चार तिनकों का तगाशा जिंदगी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: है शिकस्ता जिस्म में दमखम अभी, है शिकस्ता जिस्म में दमखम अभी, दे कोई एक जख्म गहरा जिंदगी।
0: क्या कहने, वाह वाह।
3: हलचलों को मौत सी क्यों आ गई,
0: वाह वाह,
3: कर जरा फिर हश्र बरपा जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
3: शुक्रिया। शिद्दते गम में हुआ ना फैसला, शिद्दते गम में हुआ ना फैसला, ये मुसलसल मौत है या जिंदगी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: लोग इसको जान कहते हैं मगर,
0: लोग इसको जान कहते हैं मगर,
3: है ये कितनी जानलेवा,
0: है ये कितनी जानलेवा जिंदगी। बहुत अच्छे शकील साहब।
3: कसम पुरसी देखिए नादार की,
0: कसम पुरसी देखिए नादार की,
3: कट रही है बे इरादा जिंदगी।
0: क्या कहने, बहुत खूब, बहुत
3: शुक्रिया। की शेर सुनाते हैं। ख्वाहिशों की भीड़ में गुम हो गई,
0: ख्वाहिशों की भीड़ में गुम हो गई,
3: ख्वाहिशों की भीड़ में गुम हो गई, दे गई अनवार
0: धोखा जिंदगी। क्या कहने। और सागर सिद्दीकी का शेर जाते जाते आपके नाम के,
3: शुक्रिया।
0: जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। बहुत शुक्रिया शकील साहब।
3: मेरी हिम्मत ने मुंह मोड़ा है हर मौजे हवादिस का,
0: वाह वाह।
3: मेरी हिम्मत ने मुंह मोड़ा है हर मौजे हवादिस का, मैं तूफान से खेला हूँ सबूत जिंदगी लेकर।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
3: शुक्रिया। बहुत
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी जानिब से आपके लिए बहुत सी तालियां। सलामत रहें, खुश रहें।

0: जी तरन कैसे लगी आपको शकील साहब की शायरी?
1: मुझे बहुत प्यारी लगी, मेरा दिल आ गया शायरी पे।
2: क्या कहने, हमेशा हस्बे हाल। और देखें आज का मौजूद था हमारा इस प्रोग्राम का के जिंदगी के हवाले से अशआर सुनाइए और कमाल महफिल लूट लिया। आते हैं वो सबसे पहले, दरअसल ये सदर महफिल होते हैं तो आना इन्हें सबसे आखिर पे चाहिए क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम का जो है ना एक उसे समो के रख देते हैं अपनी शायरी में, लेकिन ये हमेशा आते पहले हैं माशाल्लाह।
0: क्या बहुत
2: क्या
0: और सामीन, अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे प्रेफर्ड एशियन रेडियो स्टूडियो पर कॉल कर सकते हैं 01274306677 पे, और आप हमें सुन सकते हैं रेडियो एफएम पर, हमारी वेबसाइट पे जाके www.preferredasianradio.co.uk पर। अगर आप अपनी पोइट्री और अच्छा सा गीत हमें अपने पहुंचा सकते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं 07800599563 पर।
2: और सना हमारे अगले कॉलर स्वीडन से, बहुत दूर से, यूरोप से स्वीडन से तशरीफ ला चुके हैं
0: जी।
2: और तालियों की गूंज में इन्हें भी एक बार हम फिर खुश
0: आमदीद कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब।
3: जी वालेकुम अस्सलाम।
2: जनाब मोहतरम, क्या हाल है? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं?
3: जी अल्लाह का शुक्र शाह जी, आप सुनाए सब खैर हैं?
2: अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत करम है। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही है, खैरियत रही?
3: जी जी सब खैर है जी, सब खैर।
2: सही सही। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए, सुनने वालों के लिए क्या तोहफा लाया?
3: मुझे अंदाजा नहीं है बात कहाँ किस।
2: आज जिंदगी के हवाले से गपशप भी हो रही है, शायरी भी हो रही है, और आपके लिए हम ओपन कर देते हैं, आप जिस हवाले से कुछ आपके पास है।
3: मैंने सुने कुछ कोई बात थोड़ी सी, तो जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं।
2: हाँ हाँ, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं,
3: और क्या जुर्म है पता भी नहीं।
2: क्या कहने, लाजवाब है।
3: तो बाकी अशआर तो बहुत, लेकिन आपके नजर करने के लिए ना बंदा बड़ा ही मोहताज हो जाता है कि यार इसको कलाम ऐसा हो कि अहले ज़ौक की नजर कर सके।
2: बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया।
3: जो छुपाने की थी वो बात बता दी मुझको,
2: जो छुपाने की थी वो बात बता दी मुझको।
3: शाहजी अब आपने जोड़नी है बात।
2: जी जी,
0: ये है
3: डॉक्टर सलमान अख्तर साहब।
2: डॉक्टर सलमान अख्तर
3: जावेद अख्तर के भाई बड़े।
2: जी जी, सुलेमान अख्तर साहब। जी जी
3: जी, जो छुपाने की थी वो बात बता दी मुझको।
2: क्या कहने,
3: जिंदगी तूने बहुत सख्त सजा
2: दी मुझको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: मैं धकेल आया हूँ ये किसको कुएं में आखिर, कौन फिर चीख उठा, किसने सजा दी मुझको।
2: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: और बात सुनिएगा
2: जी जी
3: असन भाई के, थे बुजुर्गों में भी मासूम सिनफ लोग बहुत,
2: थे बुजुर्गों में भी मासूम सिनफ लोग बहुत। क्या है मिश्रा,
3: थे बुजुर्गों में भी मासूम सिफत कितने लोग, 100 बरस जीने की हर रोज दुआ दी मुझको।
2: क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, लाजवाब है। बहुत अच्छे,
3: और
2: बहुत अच्छे। ये मुझे अपने हमारे जी जी हमारे ब्रेडफुट के एक लोकल शायर थे आदिल शाह, बहुत अच्छे रेडियो के ब्रॉडकास्टर भी थे, आप हम में नहीं है। उनका एक खूबसूरत शेर इसी हवाले से था, जैसा जिस हवाले से आपने बात की है कि अजाब है बेबसी में इतनी तवील उम्रें, अजाब है बेबसी में इतनी तवील उम्रें, दे एक दिन ही यारब दे इख्तियार वाला।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
3: इख्तियार की बात करके आपने ना कोई तार और शेर देनी है।
2: जी जी जी जी जी जी जी,
3: देखे ये इख्तियार और बे इख्तियारी ये तो सुपुर्दगी का मामला, मेरा फलसफा हयात कुछ ऐसा है कि आप सुपुर्द हो जाए तो चैन उचैन है, इख्तियार तो बहुत बड़ी इब्तला है।
2: बेशक बेशक, ऐसे
3: तो दम घुटा जाता है हराती हुई सांस के साथ।
2: वाह वाह,
3: ये बड़ा कीमती शेर है।
2: जी जी,
3: हर उस बेवफा के नाम जो वफादार की वफा की कदर नहीं करता, कि दम घुटा जाता है हर आती हुई सांस के साथ, तूने क्यों अपने इरादों की हवा दी मुझको।
2: क्या
0: क्या बात है,
2: क्या
0: एक बार फिर से बोलते हैं।
3: दम घुटा जाता है हर आती हुई सांस के साथ, तूने क्यों अपने इरादों की हवा दी
2: मुझको, हवा दी मुझको।
3: और इस पे मुझे अमजद इस्लाम अमजद साहब याद आते हैं, उनका एक शेर था हसन भाई के,
2: जी जी।
3: आए हाय, वो चिराग जहां कभी जिसकी लो न कभी हवा से निगू
2: निगू हुई तेरी बेबसी आए हाय
3: तेरी बेवफाई के वसवसे
2: उसे चुपके चुपके
3: चुपके
2: बुझा गई। क्या कहने हैं, लाजवाब गजल है वो भी। सही सही,
3: काश कोई कदर करे।
2: एक शेर मुझे भी इस हवाले से याद आया, किसी का शेर है, बड़ा ही खूबसूरत है कि तेरी यादों के दिए जब भी किए हैं रोशन, तेरी यादों के दिए जब भी किए हैं रोशन, बेनियाजी तेरी आ आ के बुझा जाती है।
0: क्या बात है।
3: वाह वाह वाह। देखिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ हर उस खुशनसीब को जिसे कुछ चाहने वाला मिला, कि ऐसा नहीं है कि आप जैसा कोई और नहीं, बस उसने आपको अपना मान लिया।
2: बेशक
3: इसकी कदर कीजिए और अपने आप को इतना, वो क्या है कि अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के
2: नाम से मशहूर हो जाए। बहुत ही अच्छा है।
3: तो ये भी
2: और एक शेर नवीद साहब वो भी है ना कि खूबसूरत मिस्रा, उसका दूसरा मिस्रा इस वक्त जहन में आ रहा है, पहला कहीं गायब हो गया। वो खूबसूरत इस एतबार से है कि बैठे रहो तुम अपनी, हम जा रहे हैं वहां जहां दिल की कद्र हो, हम जा रहे हैं वहां जहां दिल की कद्र हो, बैठे रहो तुम अपनी अदाएं संभाल के।
0: क्या बात है, क्या
2: कहें।
3: बैठे रहो तुम अपनी अदाएं
0: समेट,
2: हाय हाय, बहुत खूब।
3: देखिए मैंने इस पे गिरा कर दी कि बैठे रहो तुम अपने अना के गुरूर।
2: बेशक,
0: क्या बात है, ये भी सही है।
2: बेशक, ये भी अच्छा है, अच्छी तज़मीन है, खूबसूरत।
3: देखिए सुनिए, अपनी तो कब्र पे तय है कि ये कतबा होगा।
2: आहा,
3: अपनी तो
2: कब्र पे ये
3: कब्र पे ये तय है कि ये कतबा होगा, एक ना एक दिल में तो ये आदमी जिंदा होगा।
2: बहुत
0: अच्छे।
2: और कहते हैं ना कि खाक में मिल जाएगा जब मेरी हस्ती काम काम, हमारे जो इंग्लिश के प्रोफेसर, कब्र पे ये
3: कब्र पे ये तय है कि ये कतबा होगा, एक ना एक दिल में तो ये आदमी जिंदा होगा।
2: बहुत खूब,
0: बहुत अच्छे।
2: और कहते हैं ना कि

0: अच्छा अच्छा
1: लेकिन शेर बड़ा जिंदा है वो, कि कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो।
0: हाँ खूब गुजरेगी,
1: खूब गुजरेगी जो
0: मिल बैठे
1: भाई आपसे बात करते हुए विषय ऐसा लगता है।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही।
1: और फर्क कितना है कि आंखों से परे है वरना, शेर सुनिएगा कि फर्क कितना है
0: कि आंखों
1: से परे है वरना, रात के वक्त भी सूरज कहीं जलता होगा।
0: क्या कहना, क्या कहना, फिर से पढ़िएगा, बड़ा ही अच्छा है।
1: फर्क कितना है कि आंखों से है ओझल वरना, रात के वक्त भी सूरज के ही जलता होगा,
0: डूबते शाम का मंजर
1: वो का देता है भला साथ यहाँ, आए हाय हाय, कोई होगा मेरे जैसा तो अकेला होगा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फराज का वो शेर याद आ रहा था मुझे आपके सूरज के शेर के हवाले से, कि वादा तो कर गए थे कि आएंगे शाम को, वादा तो कर गए थे कि आएंगे शाम को, सूरज खुदा के वास्ते रहना परे परे।
1: सूरज खुदा के क्या मिलता
0: है, रहना परे परे,
1: रहना परे परे। वाह वाह वाह
0: जी जी,
1: वाह वाह
0: जी।
1: देखे ये आस या तो कोई बधाए ना, अल्लाह करे कि किसी को किसी की आस हो तो मुकम्मल हो, वरना ये यास बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: ये कसर जान नहीं छोड़ती, तो इससे बड़ा दर्द कोई नहीं है। और खिड़कियां देर से खोले ये बड़ी भूल हुई,
0: खिड़कियां देर से खोली ये बड़ी भूल हुई,
1: मैं ये समझा था कि बाहर भी अंधेरा होगा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या
1: मैं ये समझा था कि बाहर भी अंधेरा होगा।
0: मुझे इससे वो शेर याद आया कि किवाड़ के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत शेर बचपन में कहीं रेडियो पे सुना था, कि बैठा है किस ख्याल में ए कल्बे नामुराद, बैठा है किस ख्याल में ए कल्बे नामुराद, उस घर में कौन आता है जिसमें न हो दिया।
1: आए, आए,
2: क्या बात है।
0: और ये कौन झांकता है किवाड़ों की ओट से, ये कौन झांकता है किवाड़ों की ओट से, बत्ती बुझा के देख सवेराना होके।
1: हसन भाई ये असल में ना आपसे बात करने का लुत्फ ये है कि आप बात से बात निकालते हैं और शेर से शेर।
0: बस
2: चलिए एक मैं अर्ज करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, देखिए सना को भी जोश आ गया कि हम
2: आप दोनों की बातों को सुन के तो मैंने सोचा चले मैं भी एक अच्छा सा करती हूँ।
1: मैं चाहता हूँ, पहले तारुफ नहीं हो सका, मैं तो हसन भाई को कॉल।
0: जी जी, सना भी है स्टूडियो में हमारा साथ दे रही है और तरंग भी, और दोनों भी शायरी की बड़ी उस्ताद है ये भी।
2: चले अर्ज करते हैं।
0: जी जी,
2: मोहसिन वो मेरी आंख से उजल हुआ ना जब, मोहसिन वो मेरी आंख से उजल हुआ ना जब, सूरज था मेरे सर पर मगर रात हो गई।
3: वाह
2: क्या बात है।
1: अरे मोहसिन के देखें, अभी हम कभी शेर जोड़ते हैं कभी शायर जोड़ते हैं, तो मुझे मोहसिन का एक शेर बड़ा बड़ा ही मेरे दिल के करीब है कि मेरे दर्द पे ससुर भाई मदद कीजिएगा।
0: जी, जी, जी, जी।
1: मेरी दोपहर पे ये शाम क्यों, मेरे सब्र पे ये अजर क्या, मेरी दोपहर पे ये शाम क्यों, मुझे ओढ़ने दे अज़ियतें, मेरी
0: आदतें ना खराब कर। क्या कह रहे हैं,
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब
0: जी, जबरदस्त है।
1: और सुनिए कि हमारे हिस्से में ले दे के एक वार आया, चलो यही सही, तुमको तो कुछ करार आया।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करार और करार दिल को सदा जिसके नाम से आया, करार दिल को सदा जिसके नाम से आया, वो आया भी तो किसी और काम से आया।
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: आप सुनिएगा शेर को फिर से, हमारे हिस्से में ले दे के एक वार आया, चलो यही सही, तुमको तो कुछ करार आया।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: जब अपने आप पर मेरा यकीन उठ सा गया,
0: वाह
1: गया गमे हयात का उस रोज एतबार,
0: एतबार आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: और कहते ना कि मोड़ से मंजिल मुझे करीब लगी, जिसे एक मोड़ से मंजिल मुझे करीब लगी, रहे हयात में वो मोड़ बार बार आया।
0: बहुत अच्छे, जिगर का वो शेर जहन में आ रहा है इस गजल की जमीन में, इसी रदीफ में काफी हमें के करार, खूबसूरत शेर के, काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, दिल कुछ से सूरत से तड़पा उनको प्यार आ ही गया।
2: क्या बात है, क्या बात,
1: बड़े ही खुश नसीब होते हैं वो दिल जिन एतबार आ जाए, गमे हयात का उस रोज एतबार आया,

0: जिसे एक मोड़ से मंजिल मुझे करीब लगी रहे हयात में वो मोड़ बार बार,
1: बार, बार आया
0: और सफर के खत्म पे ऐसा लगा मुझे गोया, सफर के खत्म पे ऐसा लगा मुझे गोया मैं एक कर्ज था खुद पे जिसे उतार आया।
1: और मुझे एक छोटा सा वाक्या इस शेर से याद आ गया और फिर साथ में जुड़ा हुआ शेर भी कि यहाँ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे हमारा पाकिस्तान से वापसी थी और
0: शाह जी आप जल्दी करते हैं, अगली बात सुनाते हैं, शेर का बदल लेते हैं, सॉरी
1: जी जी। तो वो क्या चलिए मैं शेर पे ही आ जाता हूँ कि एक तुम ही ना जब लगेज आ रहा था ना तो उसमें क्या हुआ कि दूसरों का सामान वही बार बार बेल्ट से आता है और जा रहा था। तो मैंने इतने में जो केबिन क्रूज थे एयरलाइन के वो भी सारे आ गए तो मैंने एक शेर पढ़ा तो उन सभी ने भी बड़ी दाद दी मुझे मौके पे ही कि एक तुम ही ना मिल सके वरना, एक तुम ही ना मिल सके वरना मिलने वाले बिछड़ बिछड़ के मिले।
2: क्या बात है ये सामान के लिए था स्पेशली।
0: जिंदगी जो हयात है ना, हयात
1: जी जी,
0: जिंदगी की आप बात कर रहे थे तो इसकी ना इसकी जहते होती हैं। हर सिम्त में हर लम्हे हमने जीते, कभी मैं किसी लम्हे में किसी सिम्त को देखता हूँ जिसकी जेह तो सिम्त एक लम्हे में एक साथ एक जैसी हो जाए वो साथी हुआ करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज हो जाते हैं।
1: बेशक ऐसे,
0: लेकिन कभी भी आप इसको कैद नहीं कर सकते।
1: बेशक।
0: तो अगला शेर सुनिए, शायद इसका हस्बे हाल हो जाए कि मेरी ही जात का साया पड़ा ना हो उस पर,
1: वाह
0: मेरी ही जात का साया पड़ा ना हो उस पर जिसे करीब से देखा उसी पे प्यार आया।
1: बहुत अच्छे, क्या कहने, लाजवाब है।
0: मेरी ही जात का साया पड़ा ना हो उस पर जिसे करीब से देखा उसी पे प्यार आया। अजीब बात थी कुछ आज तेरे लहजे में, कि पहली बार मुझे तुझ पे एतबार आया।
1: बहुत अच्छे। और कहते ना एक शेर इसी हवाले से याद आया था कि देख कर तुझको मुझे बेसाख्ता प्यार आता है, देख कर तुझको मुझे बेसाख्ता प्यार आता है, नक्श किस तरह संवारे हैं खुदा ने तेरी।
2: क्या बात है।
0: देखिए आप फिर वहां पे कैद करते हैं, मुझे तकरार हो जाएगी इस बात पे।
2: इसी में तो मजा आता है, एक तरह से एक शरशारी उसको हम जवाब दे आपको।
1: पता
0: क्या वो हवाला आपका कुछ और है शाहजी और मेरा कुछ और है, आप होने को सब कुछ समझते हैं, मैं ना होने को।
1: जी जी ऐसे।
0: और अहमद फराज साहब लिखते हैं कि जो गैर थे वो इसी बात पे हमारे हुए, जो गैर थे वो इसी बात पे हमारे हुए कि हमसे दोस्त बहुत बेखबर हमारे हुए।
1: बहुत अच्छे।
0: और किसे खबर वो मोहब्बत थी या रकाबत थी, बहुत से लोग तुझे देखकर हमारे
1: कहते ना कि उसको दरपर्दा कहीं हमसे मोहब्बत ही न हो, जो किसी और को हमारा नहीं बनने देता।
2: वाह।
0: और सुनिए कि अब एक हजूम शिकस्ता दिला है साथ अपने, जिन्हें कोई ना मिला हम सफर हमारे हुए।
1: बहुत अच्छे। और ब्रेक का वक्त हो गया, अंदाजा तक हमें नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत खुशी हुई, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। ठीक है,
0: बहुत मेहरबानी,
1: अल्लाह।
3: In class to help you pass first time, need your taxi badge for West North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट दिलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही दिलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
1: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
2: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक ऑन ब्रेडफोर्ड 9627229627
1: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
4: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: जी सामीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको रंगे महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। अभी आप सुन रहे हैं हमारा प्रेफर एशियन रेडियो 1430 AM पर। अगर आप हमारी नशियात सुनना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर। और नवीद साहब, आपने हमें कॉल की थी स्वीडन से, हमें बहुत मजा आया आपकी शेर व शायरी सुन के। और हसन जी, आपने भी बहुत ज्यादा कमाल कर दिखाया। क्यों सर,
1: हसन जी तो ब्रेक ही भूल गए थे।
0: महफिल आपने जमा दी भाई, दोनों ने मिलके जमा दी।
2: नाम ही है ना रंगे महफिल,
0: रंगे महफिल। जब रंगे महफिल नाम हो तो उसमें रंग तो जमाना पड़ता ही है।
1: इतनी प्यारी कॉल आई थी कि हम तो ब्रेक ही भूल गए थे कि ब्रेक भी करनी है। हसन भाई तो बिल्कुल ही भूल गए थे। बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत अच्छा।
2: एक खूबसूरत गीत भी है और हमारे रुखसत चौधरी साहब
0: चौधरी
2: साहब
1: जी, ये आपके नाम

0: और देखिए अब तालियों की गूंज में हमारे अगले बहुत ही मोहतरम सुनने वाले तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। चश्मे रोशन दिल माशाब नहद काबिल इज्जत काबिल एहतराम बावकार बाजोक बाशोक बहुत नफीस बहुत लतीफ बहुत शफीक और हर दिल अजीज शख्सियत पीर हसन शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं तरन भी हैं और सना भी हैं, वो भी आपको वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं।
1: जी माशाल्लाह, मैं हकीर, मैं नाचीज और हादसा की तरफ से इन दो माशाल्लाह लेंजे दस्तियों को मोहब्बतों भरा, चाहतों भरा, उल्फत भरा, हकीकत भरा, नहायत अदब और नहायत एहतराम से दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत सलाम और आदाब।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: हजूर कैसे हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा समा आपने बांधा हुआ है और माशाल्लाह क्या बैतबाजी शुरू है माशाल्लाह। क्या क्या कहने माशाल्लाह लाजवाब। पहले उस्ताद मोहतरम के मनाब शकील साहब आए थे माशाल्लाह, वो कमाल कर गए और फिर नबीर साहब आए, उन्होंने तो कमाल की लाती तोड़ दी।
0: और कह रहे थे कि अभी मेरी सेकंड शिस्त है रुखसार चौधरी साहब के बाद। मैंने कहा बिस्मिल्लाह फिर आ जाइएगा।
1: ओ सर मुझे इल्म नहीं था, लेकिन मैं तो बस ये गया जनाब, उनको तो आना चाहिए जिक्र। मैं तो
0: नहीं नहीं नहीं, आप सुनाएंगे, आपसे भी हम ज्यादा नहीं करेंगे, आपको सुनाएंगे तो फिर हम उन्हें वापस दोबारा लेंगे।
1: सर इतने माशाल्लाह आपके पास भी माशाल्लाह साहबाने अकल और दानिश हस्तियां तशरीफ फरमा है और माशाल्लाह राणा साहब जो आए थे माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि जब राणा आ जाए तो राणे के ऊपर फिर कौन आ सकता है। कमाल की शख्सियत है तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह। और जिंदगी के ऊपर जो है कहते हैं कि बोलना, कहते हैं कि वो तो है ही बहुत मुश्किल, हर बंदा जिंदगी को और बोल भी नहीं सकता। के हाल जी?
0: ऐसे ऐसे
1: तो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह प्रोग्राम जा रहा है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से जनाब पीर सैयद राब हैदर शाह साहब को बहुत बहुत सलाम है जी, और मोहतरम शकील साहब है, जंगीर साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, महबूब लाई भाई हैं, चौधरी फयाज साहब हैं और राणा नबीर साहब हैं जी, इन सबको और आपके माशाल्लाह ब्रेड फॉर एड रेशियो की नशरियात जहाँ जहाँ तक सुमातों तक जा रही है, सभी को मेरी तरफ से नहायत अदब और एहतराम से बहुत बहुत सलाम और आदाब।
0: वालेकुम अस्सलाम और आपको भी तस्लीमात।
1: थैंक यू सर। वो कहते हैं कि जिंदगी बस एक दोस्त वफादार चाहती है। उफ कितनी मासूम और नादान है ये जिंदगी, खुद बेवफा है और वफा चाहती है।
0: बेशक बेशक।
1: तो ये एक छोटी सी मैं पोएट्री लेके आया हूँ और मैं आपकी नजर और माशाल्लाह वैसे बस ये छोटा सा ताले दिलम मेरा कोई बात।
0: ओ आपकी कॉल ना जाने क्यों कट गई है, माजरा चाहते हैं इनकी कॉल कट गई है। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा, आपको दोबारा हम ऑनलाइन लेके चलेंगे। हमारी तरफ से तो बिल्कुल हम सुन रहे थे, हम आतन गोश्त थे आपकी बातों में, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। प्लीज आप दोबारा कॉल कर लें ताकि आपकी बात मुकम्मल हो सके और इस प्रोग्राम को हम आगे लेके जा सकें। आपकी दोबारा शिरकत की हम मंजूर हैं।

0: पर मैं माधव सर का हकदार हूँ कि मेरी तरफ से जो है ना वो गाथा जिसके लिए मैं आपसे और तमाम सामने से माफ़ चाहता हूँ कि वो मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से जो है ना वो कॉल ड्रॉप हो
1: गई। जी जी कोई मसला नहीं, आपको दोबारा खुश हूँ। जी जी
0: थैंक सर, बहुत शुक्रिया। तो ये छोटी सी नज़म है जो मैं आपके गुजार करना तमाम सामने की।
1: जी जी
0: जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद।
1: बहुत खूब।
0: कौन घूंघट को उठाएगा सितमगर कह के, और फिर किससे करेंगे वो हया मेरे बाद।
1: मेरे बाद। बहुत खूब, बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया। फिर मोहब्बत की जमाने में ना पुरसश होगी, रोएंगी सिसकियां ले लेके वफा मेरे पास।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
2: बहुत खूब।
0: हाथ उठते हुए उनको ना कोई देखेगा, किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे पास।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: क्या दिखता है किस कदर गम है उन्हें मुझसे बिछड़ जाने का, हो गए वो भी जमाने से जुदा मेरे पास।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: आखिरी शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ।
1: जी इनायत।
0: वो जो कहता था कि नासर के लिए जीता हूँ, वो जो कहता था कि नासर के लिए जीता हूँ, उसका क्या जानिए क्या हाल हुआ हो मेरे पास।
1: बहुत खूब, बहुत खूब
0: सर। टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और तमाम सामेईन को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप मुझे मेरे दुआ में हमेशा रहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे अपने दुआ में याद रखें।
1: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह
2: जी। सामीन अभी आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारी सी शेर व शायरी चौधरी साहब ने हमें,
1: रुखसार
2: चौधरी साहब ने हमें कॉल की थी और बहुत ही प्यारी सी शेर व शायरी उन्होंने हमें सुनाई। माजरत करते हैं कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी,
1: वो उन्होंने खुद माना कि उनकी तरफ से
2: हमारी तरफ से हो गई थी, हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई। तो जी सामीन अभी आप सुन रहे हैं ब्रेफर्ड एजियन रेडियो 1430 AM पर। आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और अगर आपको हमें अपनी स्टूडियो पे कॉल करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर,
3: और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 07800599563।
1: जी जी। और हमारे जो भी यहाँ अगले कॉलर हैं उनसे इल्तमास है कि आप अगर तशरीफ लाना चाहें तो आप जो ही उधर से कॉल में लाएंगे आप हम तक पहुंच जाएंगे।
2: क्यों नहीं हसन जी, एक अच्छी सी मैं जिंदगी के बारे में आपको एक गजल सुना दूं।
1: जी जी जरूर।
2: ये बात तो सच है कि वाकई जिंदगी एक किताब है।
1: बेशक।
2: तो जी ये एक है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है।
1: वाह वाह।
2: कहीं एक हसीन ख्वाब है, कहीं एक हसीन ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। कभी खो लिया कभी पा लिया, कभी रो लिया कभी गा लिया, कहीं रहमतों की हैं बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है।
1: बहुत अच्छी।
2: ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: तो ये जिंदगी जो है एक खुली किताब है।
1: बेशक बेशक।
2: तो चलें कुछ आप हमें अब कुछ सुनाएं।
1: अब यूं कहता हूँ कि गीत है और साथ में हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो कॉलर हैं जिन्हें हमने वक्त दे रखा है कि आपने कॉल करनी है, तो उनकी जो ही कॉल मिलेगी तो हम उन्हें भी ऑन द एयर लेके चलेंगे।

0: और मेरे ख्याल में हमारे अगले सामने लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम।
0: जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मुझे जनाब अदम का वो शेर याद आ रहा है कि शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हूँ आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ। जी जी
1: उसको सौगात उतनी मिलेगी।
0: हाँ हाँ
1: फूल फूल कैसे था, फूल जिंदगी में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा।
0: वो कहते हैं ना कि इश्क इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, ज़र्फ के फर्क से एहसास बदल जाता है।
1: वाह वाह वाह शाहजी आप मत सुनाया कीजिए, आप ऐसे ही कॉल लेते हैं, खाम खा का तकल्लुफ करते हैं आप।
2: सच बात है आपका शो वैसे ही फेमस बहुत हो जाएगा जब ये बहुत अच्छे अच्छी शेर शायरी करेंगे ना, तो इनका शो बहुत ज्यादा।
1: वो मुझे ये बात मुकम्मल नहीं होने देते, मुझे अब याद आ गया वो गीत के मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: हाँ इसी तरह से
1: मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बस इसी तरह से बस हम जिंदगी कर ली। तो वो शेर गजल नामुकम्मल ना रह जाए जो अहमद साहब साहब ने सुना था, पहले सुनाइए कि चोरी साहब आके चले गए।
0: जी जी जी वो आए और चले गए, बहुत ही अच्छे शेर सुनाए और आपका बहुत बहुत आपकी शायरी उन्होंने बेहद पसंद की है।
1: अच्छा मैं माजरा चाहता हूँ, उस दौरान मेरी मेरे प्यारे दोस्त अहमद जहांगीर नूरपुरी साहब जर्मनी से उनसे बात हो रही थी।
0: जी जी जी
1: तो पहले मैं कलाम वो मुकम्मल कर दूँ जो मैं आपकी नजर कर रहा था अहमद शाह साहब का, कि जो गैर थे वो इसी बात पर हमारे हुए कि हम के हमसे दोस्त बहुत बेखबर हमारे हुए।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: किसे खबर वो मोहब्बत थी या रकाबत थी, बहुत से लोग तुझे देखकर हमारे हुए।
2: क्या बात है।
0: वाह वाह।
1: और अब एक हुजूम में शिकस्ते दिला है मेरे साथ अपने, जिन्हें कोई ना मिला हम सफर हमारे हुए।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और किसी ने गम तो किसी ने मिजाज गम बख्शा।
0: वाह वाह।
1: किसी ने गम तो किसी ने मिजाज गम बख्शा, सब अपनी अपनी जगह चारागर हमारे हुए।
0: और मोहसिन नकवी का वो शेर के बख्शा है जिसने रूह को जख्मों का पैराहन, बख्शा है जिसने रूह को जख्मों का पैराहन, मोहसिन वो शख्स कितना तबीयत शनास था।
1: वाह वाह
2: वाह
1: वाह वाह वाह
2: तड़का लगा दिया।
1: और बुझा के ताक की शमे न देख तारों को, बुझा के ताक की शमे न देख तारों को, इसी जुनू में तो बर्बाद घर हमारे हुए।
0: और नवीद सुबह की अफवाह इतनी आम हुई, नवीद सुबह की अफवाह इतनी आम हुई कि निस्व शब को घरों के दिए बुझाए गए।
1: हाय हाय हाय। और वो एतमाद कहाँ से फराज लाएंगे, सुनिएगा जरा।
0: वाह वाह।
1: वो एतमाद कहाँ से फराज लाएंगे, किसी को छोड़कर वो अब अगर हमारे।
0: क्या कहने क्या कहने। और मुझे ये शेर याद आ गया इससे कि खूबसूरत शेर है कि एतमाद और हौसले के हवाले से है कि देने वाले ने दिया हौसला कितना मुझको, देने वाले ने दिया हौसला कितना मुझको, राज ये तुमको बताऊं ये जरूरी तो नहीं।
2: क्या बात बहुत खूब।
1: हाय हाय हाय हाय। वो क्या था कि रो पड़ा वो आप मुझे हौसला देते।
0: हाँ हाँ हाँ। वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए मजीद अमजद, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए।
1: चले अब सुनिए, मौसम का जिक्र हो गया तो मौसम नकवी मेरे दिल के बड़े करीब, तो कहते हैं कि ये तवील है जरा
0: जी जी,
1: आपकी बर्दाश्त का भी इम्तिहान होगा। अब मुझे बताइए कोई ब्रेक या कोई चीज,
0: अब बस प्रोग्राम में यूं कह लीजिए कि 9 मिनट रहते हैं टोटल, फिर उसके बाद इजाजत लेंगे हम।
1: चले दश्ते हिजरा में न साया न सबा तेरे बाद।
0: वाह वाह अच्छी बात है।
1: कितने तन्हा है तेरे आबला पा
0: तेरे बाद,
1: कोई पैगाम न दिलदाज नवा तेरे बाद, खाक उड़ती खाक उड़ाती हुई गुजरी है सबा तेरे बाद।
0: वाह वाह।
1: लब है एक हर्फ तलब था न रहा तेरे, लब पे एक हर्फ तलब था न रहा
0: तेरे बाद,
1: दिल में ताखीर की ख्वाहिश न दुआ तेरे बाद, और अक्सो आईना में अब रब्त हो क्या तेरे बाद, हम तो फिरते हैं खुद अपने से खफा तेरे बाद।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और धूप आरिज की ना जुल्फों की घटा तेरे बाद, की रात है कि मोहब्बत की सजा तेरे बाद।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मुझे जनाब अनवर शोर का वो शेर बार बार ध्यान में आ रहा है कि इसी हवाले से है कि मेरे घर से जब वो हुए रुखसत, मेरे घर से जब वो हुए रुखसत, रोशनी घट गई सितारों की।
2: क्या?
1: अरे मुझे एक शेर याद आ गया कि मेरी निगाह से खुद को जो देख लेते कभी, मेरी निगाह से खुद को जो देख लेते कभी, तुम्हारे हाथ से आईने गिर गए हो।
0: वो तो वो है, वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो।
2: अरे
1: इसके गीत भी याद आ गया कि मतलब निकल गया है तो पहचान से नहीं,
0: क्या कहने क्या कहने,
1: यूं जा रहे हैं जैसे हमें
0: जानते नहीं
1: जानते नहीं। अच्छा इस पे शेर है वो सुनिएगा।
0: जी जी।
1: हमने तुम्हें पसंद किया क्या बुरा किया,
0: रुतबा ही कुछ बुलंद किया,
2: क्या बात क्या बात, आपकी तो आवाज ही बहुत प्यारी है।
1: क्या बुरा, सुनिए सुनिए बात वो जुड़ती है ना जी, रुतबा ही कुछ बुलंद किया क्या बुरा किया है, हर गली की खाक तो हम छानते नहीं। अरे हुस्न वालों को बताए कि
0: इससे मुझे शेर याद आ गया कि फैलाए हुए हाथों को हिकारत से ना देखो, फैलाए हुए हाथों को हिकारत से ना देखो, हर एक के दर पे ये सवाल ही नहीं जाता,
1: नहीं जाता। वाह वाह
2: शाजी बहुत खूब।
1: शाजी
0: जी जी जी।
1: ये फिरती है सरे कुए जफा तेरे बाद,
0: वाह वाह।
1: परचमे तारे गिरे बांक, परचम तारे गिरे बांक को हुआ तेरे बाद,
0: वाह वाह।
1: और पैरहन अपना न सलामत न कबा तेरे बाद, बस वही हम हैं वही सहरा की रिदा तेरे बाद, और निगते वाह न है न दस्ते कजा तेरे बाद, शाखे जा कोई गुंचा न खिला तेरे बाद।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: और दिल न महताब से उजला न जला तेरे बाद, एक जुगनू था चुपचाप बुझा तेरे बाद, और दर्द सीने में हुआ नोहा सरा तेरे बाद, दिल की धड़कन है कि मातम की सदा तेरे बाद, और कौन से रंगों के भंवर कैसी हिना तेरे बाद, अपना खून मेरी हथेली पे सजा तेरे बाद, तुझसे बिछड़ा तो मुरझा के हुआ बर्दे हवा, कौन देता मुझे खिलने की दुआ तेरे बाद, और एक हम है कि है बरगो नवा तेरे, एक हम है कि बेन बरगो नवा तेरे बाद, वरना आबाद है सब खल्के खुदा तेरे बाद, एक कयामत की खराशे मेरे चेहरे पे सजी
0: जी,
1: एक कयामत की खराशे मेरे चेहरे पे सजी, एक मैशर मेरे अंदर से उठा तेरे बाद, आया फलक नाज मेरी खाक निशानी तेरी, मैंने मिट्टी पे तेरा नाम लिखा
0: तेरे बाद। बहुत
1: तू के सिमटा तो रगे जा की हदों में सिमटा, मैं के बिखरा तो समेटा ना गया तेरे बाद। और ये अलग बात है कि अफशाना हुआ तू वरना, मैंने कितना तुझे महसूस किया
0: तेरे बाद।
1: और मिलने वाले कई मफहूम पहन कर आए,
0: हाय
1: कोई चेहरा भी ना आंखों ने पढ़ा तेरे बाद, काश वो सुन ले। और बुझे जाते हैं खदो खाल मनाजरे उफ्क, फैलता जाता है ख्वाहिश का खला तेरे बाद, और मेरी दुखती हुई आंखों से गवाही लेना, मैंने सोचा तुझे अपने से सिवा तेरे बाद, और सह लिया दिल ने तेरे बाद मलामत का आजाब, वरना चुभती है रगे जा में हवा तेरे बाद, मैंने सुनिएगा, सह लिया दिल ने तेरे बाद मलामत का आजाब, वरना चुभती है रगे जा में हवा तेरे बाद, और जाने मोहसिन मेरा हासिल यही मुबहम सतरे, हाय हाय हाय, जाने मोहसिन मेरा हासिल यही मुबहम सतरे, शेर कहने का हुनर भूल गया तेरे।
0: हाँ, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद।
1: आवार गाने शौक सभी घर के हो गए, आवार गाने शौक
0: सभी घर के हो गए,
1: घर के हो गए, एक हम ही है कि कूचाए दिल भर के हो गए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: फिर यूं हुआ कि तुझसे बिछड़ना पड़ा हमें, फिर यूं लगा कि शहर समंदर के हो गए।
0: क्या
1: कुछ दायरे तगैरे दुनिया के साथ साथ ऐसे खिंचे के एक ही महवर के हो गए। और इस शहर की हवा में है ऐसा भी एक फसूं, जिस जिसको छू गई सभी पत्थर के हो गए। और सूरज लाही था कि वो साए बढ़े के शौक, कम काम नाने शहर बराबर के हो गए।
0: मिलता था वो मुझे कभी पल पल के फर्क से, फिर यूं हुआ कि फर्क ये सालों पे आ गया। मिलता था मुझसे वो कभी पल पल के फर्क से, फिर यूं हुआ कि फर्क ये सालों पे आ गया। और फिर यूं हुआ कि और अगला मिस्रा ज़हन से निकल गया कि मिलता था मुझसे वो कभी पल पल के फर्क से, फिर यूं हुआ कि फर्क ये सालों पे आ गया।
1: बयान करें
0: जी,
1: हम जो पहले कहीं मिले होते,
0: हाँ,
1: और ही अपने सिलसिले होते,
0: सिलसिले होते। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बड़ी देर में मिला है मुझे,
1: और फिर हर एक बात ठीक से होती, फिर ना उलझन ना फासले।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमने इजाजत लेनी है, तो इंशाल्लाह ताला अगली महफिल में आप आपका भरपूर इंतजार रहेगा, जरूर आइएगा।
1: हमारा आना नाना इसका वादा कोई नहीं है, लेकिन आज आपने मुझे मेरे दिल को बाग बाग कर दिया और मेरी बात पहुंच गई।
0: सलामत रहे, सलामत रहे, आपके लिए बहुत सी तालियां। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।

0: और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाबे नवीद राणा साहब स्वीडन से हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। बताइएगा इनकी शायरी आपको कैसी लगी, आप दोनों को?
1: बहुत अच्छी
0: जवाब
2: जान डाल दी उन्होंने हमारे रेडियो प्रोग्राम में आज आके,
0: बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इनका हमें इंतजार रहेगा।
3: हमारे पास कितना टाइम रह गया, हमारे पास अच्छी सी गजल
0: दो मिनट से, अगर हमारे कोई और सुनने वाले भी आना चाहें तो उनसे भी एक आध शेर हम।
3: हमें एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, इमरान साहब को एक गजल सुननी है, तो चलें आपके नाम पे करते हैं ये गजल। जिंदगी यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मुझे सबा हो जैसे,
0: मुझे सबा हो जैसे।
3: लोग यूं देख के हंस देते हैं, लोग यूं देख के हंस देते हैं, तू मुझे भूल गया हो जैसे।
0: क्या कहने एहसान दानिश की खूबसूरती।
3: इश्क को शिर्क की हद तक ना बढ़ा,
0: आहा,
3: इश्क को शिर्क की हद तक ना बढ़ा, यूं ना मिल खुदा हो जैसे,
0: मुझसे खुदा हो जैसे। क्या कहने,
3: मौत भी आई तो इस नाज के साथ, मौत भी आई तो इस नाज के साथ, मुझ पर एहसान किया हो जैसे।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: ऐसे अनजान बने बैठे हो जैसे, तुमको कुछ भी ना पता हो जैसे।
0: क्या कहने, क्या
3: जिंदगी बीत रही है दानिश, एक है जुर्म सजा हो जैसे।
0: बहुत अच्छे। और सामिन अब इसी के साथ आज

0: listening to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop, or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: You are tuned to Bradford Asian Radio on 1413 AM and online. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
2: आज़ीज़ सुनने वालों की खिदमत में हिसाम मुकद्दम का आदाब अर्ज़ है। ब्रैडफ़ोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM एंड ऑनलाइन आपकी खिदमत में गुलदस्ता प्रोग्राम लिए हाजिर है और एशियन रेडियो लाइव भी आपका साथ निभा रहा है जो दुनिया भर में सुना जा रहा है। तस्लीमात। मैं समझने से कासिर रहा तेरी मुश्किलों को, मैं समझने से कासिर रहा तेरी मुश्किलों को, अब जो तू ही नहीं है

कि गुजराती में अरदास के बाद अब एक अनमोल तोहफा राजा मेहदी अली खान साहब की कलम से निकला हुआ फिल्म अनपढ़ के लिए मदन मोहन की धुन आपकी नजरों ने समझा प्यार की।

0: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: दोस्तों अब बारी है आशा भोसले और फिल्म का नाम है बहारें फिर भी आएंगी. संगीत बख्शा है ओपी नैयर ने. कलाम अनजान का है. वो हंस के मिले हमसे हम प्यार समझ बैठे. बेकार ये उल्फत का इजहार समझ बैठे. अनजान का है. वो हंस के मिले हमसे हम प्यार समझ बैठे. बेकार ये उल्फत का इजहार

0: 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड।

0: फुट BD88 JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
2: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काकी की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
5: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
4: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग।

पंकज उदास की आवाज के बाद अब सुनते हैं अद्दान समी खान और आशा भोसले की आवाज में कभी तो नजर मिलाओ कभी तो

विश शारदा और सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज में फिल्म पहचान से गीत इसे लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत बख्शा है शंकर जय कृष्ण ने। गंगा राम की समझ में ना।

कहीं राजेंद्र कृष्ण के गले से टी हुई ये गजल संगीत बख्शाए सलील चौधरी ने इसे गा रहे हैं। तरत महमूद, फिल्म का नाम है छाया। आंसू समझ के क्यों मुझे आग से तूने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। तलत महमूद साहब।

लीजिए पेश है मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हेरोइन एक रात की से, शिवाजी घनश्याम की तर्ज पे साजन दहलवी का कलाम। ये क्या जिंदगी है समझ में ना आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। मोहम्मद रफी।

0: 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक।

0: You are tuned to Bradford Asian Radio on 1413 AM and online.
1: अलकाय अग्नि की आवाज में आनंद बख्शी का कलाम, फिल्म थी जख्म, संगीत बख्शा था एम एम करीम ने, अब पेश खिदमत है अमिताभ बच्चन और मुकेश की आवाज में सहर्ष साहब का कलाम, फिल्म का नाम है कभी कभी, इसकी तर्ज रवि ने तरतीब दी है। मैं दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पर मेरी हस्ती है, पल दो पर मेरी कहानी है।
2: कल नई कोंपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे, और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है।

फिल्म कभी कभी से साहर साहब का कलाम कभी आपने मुकेश की आवाज में सुना। अगली गजल हम जनाब मुनीर सुबेदार और सुबेदार कुंभे के लिए डेडिकेट करते हैं यहाँ लिस्ट में। और यही दिलकश गजल हम नन्ही मुन्ने फरिश्ते खलील के पहले साल की राह के मौके पर डेडिकेट किए देते हैं। मुकद्दम अनवरी नूरे और चरफरे फैमिलीज की तरफ से जुग जुग जो हजारों साल हर साल के दिनों 50,000 जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। उस्ताद महली हसन साहब कतील शिफाए का कलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं।

0: Guzzles Koalis. Classical music.
1: On Bradford Asian Radio.
2: Ogden Lengma. Hamni ki asif ki film Mughal-e Azam se liya hai. Ga rahe hain Lata Mangeshkar. Kalam Shakil sahab ka hai. Aur sangeet baksha hai. Naushad Ali ji. Ae ishq ke sab duniya wale बेकार की बातें करते हैं पायल के गमों का इल्म नहीं जनकार की

दोस्तों, अब बारी है कलामे इकबाल की। बच्चे की दुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। इसे ये गा रही है अपनी ये खुद।

0: 13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।

0: वो जो पिया मन भाई।
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
1: बालियां, अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार।
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER, 01274-491-442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD9 4QU, 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274-306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677. Bradford Asian Radio.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
0: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
0: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
0: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274-201679।
1: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: प्रोग्राम के अगले पाए पे एसपी जोन की आवाज में फिल्म सवेरा से ली गई ये गजल, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हसी है।

गुलदस्ते में रुबाई का रंग शामिल हो जाता है। इसे जमीर काजमी ने लिखा है, मगर उमर खयाम की ही रुबाई है। गा रहे हैं पंकज उदास।

दोस्तों, अगला गीत हमने फिल्म खानदान से लिया है, जिसे नक्श लाल पूरी ने लिखा और खयाम साहब ने इसकी खूबसूरत मौसीकी तैयार की है। गा रही लता मंगेशकर, ये मुलाकात एक बहाना है।

0: On 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स।

0: Guzzles Qualis. Classical music.
1: On Bradford Asian Radio.
2: अब बारी है जानी मानी फिल्म बरसात की रात की, गा रहे हैं मोहम्मद रफी साहब, साहर का कलाम और रोशन का संगीत। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कभी देखा है।

0: पेशे शकील बदायूं का कलाम, तेरी सूरत जो देख ले शायर अपने शेरों में ताजगी भर ले, एक मुसव्विर जो तुझको पा जाए अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले, नगमगर ढूंढ ले अगर तुझको दर्द भरते हो दिल की तारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। रूमानी अंदाज में गा रहे हैं मोहम्मद रफी साहब, तर्ज रवि ने बनाई है।
1: हुस्न वाले

फिल्म घराना से लिया गया। ये गीत मोहम्मद रफी आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। अब हाजिर खिदमत है नौशाद की ये धुन, शकील का कलाम, फिल्म का नाम है मुगले आजम। गा रहे लता और साथी, जब रात है इसी पतवाली, फिर सुबह का आलम।

0: लीजिए पेशे फिल्म सीमा से लिया गया ये युगल गीत के कोरस तू प्यार का सागर है।
1: On 1430 AM DAB Plus, our free mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: उफ कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
8: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 124 लेन ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफे

0: की बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सूफी ज्वेलर्स?
0: सूफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओक लेन, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Bradford Asian Radio.
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679, or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री

गीत भी शैलेंद्र साहब की कलम से निकला है, तर्ज शंकर जयकिशन ने बनाई है। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। गा रहे हैं मुकेश। सजनवा बैरी हो गए हम।

तुम्हारी है फिल्म यास्मीन की। इस कलाम को लिखने वाले हैं उर्दू के महान पोएट जानिसार अख्तर। संगीत बख्शा है सी रामचंद्र ने। बेचैन नजर, बेताब जिगर, ये दिल है किस

अगले नेटवर्क को हमने फिल्म बरखा से लिया है। संगीत बख्शा चित्रकूट ने, इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण साहब ने, गा रहे हैं मोहम्मद रफी। आदमी चिराग है उसकी चलेगी क्या चलती हवा के सामने, मोहम्मद रफी साहब।

लीजिए पेश एक दुगाना आशा और रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है नकली नवाब, इसे कैफी आजमी लिखा है, संगीत बख्शा है बाबुल ने। हम दीवाने तेरे।

0: 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping, featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07-885-428-349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू।

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian.

0: रेडियो ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
0: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेड फ्रूट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
0: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
1: 33 वेटले लैंड ब्रेड फ्रूट,
0: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री

0: 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड

0: On 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी

0: वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। वो भी कारपेट्स।

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping, featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स,

0: 24/7, the best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio.
2: Hi, namaste, assalamu alaikum. You are listening Bradford Asian Radio 14:13 AM and online. सामीन बहुत खुशी हो रही है आपको इस रेडियो से मुखातिब होते हुए मुझे क्योंकि बहुत दिनों बाद आज शो के लिए आई हूँ और बहुत ज़्यादा बिजी हूँ रेगुलर नहीं शो कर पाती इसके लिए बहुत बहुत अफसोस है मुझे आई होप कि आप मुझे माफ़ कर देंगे लेकिन जब भी आऊँगी बहुत ही अच्छा शो लेकर आऊँगी आप सबको एंटरटेन करने के लिए आई होप हम जो गाने आज लगवाने वाले हैं वो सभी आपको बहुत मज़ा देंगे मैं बात कर रही हूँ आज बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है रुदाली फिल्म से गाने के बोल कुछ इस तरीके से हैं दिल होम होम करे रुदाली एक्चुअली एक ऐसी फिल्म थी जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही लोगों को क्लियर ना हो सका कि आखिर रुदाली है क्या शुरू में मैं भी बहुत कंफ्यूज थी लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि रुदाली एक ऐसी औरत का नाम था ऐसी औरत को कहते हैं जो बैन करती है रोती है मरने वाले के सर पे सो बहुत ही अजीब टॉपिक को लेके प्रोड्यूसर ने एक रिस्क लिया और फिल्म बनाई लेकिन बहुत किस्मत वाले थे वो फिल्म चल गई और बहुत चली खूब चली बहुत धूम थी फिल्म की और जिस जिसने भी देखा उस फिल्म को भुला ना पाया तो लेकिन मैं समझती हूँ कि गाने बहुत मैटर करते हैं किसी भी फिल्म के और ये गाना जो इस फिल्म में है दिल होम होम करे जो म्यूज़िक बैकग्राउंड पे चल रहा है तो ये बहुत खूबसूरत गाना था एक ख़ास किस्म की पुरसरारियत है इस गाने में और ये आँखों में बात पाई जाती है डिम्पल कपाड़िया जी की बहुत ही मिस्टीरियस सी और उदास सी आँखें सो काम कर गई वो आँखें फिल्म को चार चांद लगा दिए उन आँखों ने लेकिन ये बहुत खूबसूरत गाना गया उन्होंने

खूबसूरत फिल्म जो कि जिसमें हीरो थे अशोक कुमार जी, और अशोक कुमार जी को कौन नहीं जानता। बहुत साल पहले जब वो आए तो सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन सिंगर ना बन पाए और एक्टर बन गए।

सो हैरानगी की बात है कि किशोर जी बनने आए थे एक्टर. दोनों भाइयों को पता नहीं था दोनों में डिफरेंट टैलेंट है, लेकिन गाना गाया है मन्ना डे जी ने.

सामीन एक्चुअली ये गाना मुझे बहुत पसंद है, सो मैंने भी गुनगुना दिया साथ साथ। तो होता ये है कि हम सभी अपने दिल को बहुत फॉलो करते हैं, हम अपने दिल की बहुत बात मानते हैं, और मैं करती हूँ ये म्यूज़िक का शो जिसका मकसद ये होता है कि आप लोगों का वक्त जो है, समय जो है, वो अच्छे से गुजर जाए, आप इंजॉय करें ख़ास तौर पे वीकेंड पे। तो इसीलिए मैं आपको कोशिश करती हूँ वो गाने सुनवाऊँ जो आपके मन को बहला दें। तो बढ़ते हैं माजी का एक और बहुत खूबसूरत नगमा, नगमे के बोल हैं ये जीवन है और इस जीवन में बहुत कुछ होने वाला है, हो चुका है, लेकिन हमेशा रहने वाला नहीं। सो जहन में याद रखा कीजिए, कभी उदासी के लम्हे हमेशा नहीं रह जाते, कभी खुशी के लम्हे भी हमेशा नहीं रह जाते। सो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आइए और हंसी खुशी जो वक्त भी गुजर रहा है शुक्र कीजिए उस मालिक का। बढ़ते

0: 24/7, the best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio.
2: इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जीवन खुशियों और दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन हमेशा कुछ भी नहीं रहने वाला। कभी खुशियां होती हैं और कभी गम, और कुछ भी तो हमारा नहीं है। असल फील जो हम ऑन कर लेते हैं, हर चीज़ को काबिज होना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, ये बात हमें तकलीफ देती है। अगर हम सिर्फ चीज़ों के साथ रिलेट करें, एक अच्छे रिलेशन में रहें, किसी चीज़ पर भी अपना रोब ना डालें, किसी चीज़ को भी ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश ना करें, और हर शख्स को अपनी ज़िंदगी जीने दें, जो जितना टाइम आपको समय देता है, मोहब्बत देता है, जो कुछ तकदीर ने आपको दिया है, जो मालिक ने दिया है, उस पर आप राज़ी हो जाएं, वही आपके लिए बेहतर है। और इसी राज़ी होने से ज़िंदगी में इत्मीनान आता है, सुकून आता है। सो जिस दिन हमने ये सीख लिया, उस दिन ज़िंदगी आसान हो जाएगी और हम पुकारते नहीं फिरेंगे कि खुशी तो कहाँ है, मेरा दोस्त तो कहाँ है, मेरी मोहब्बत तो कहाँ है, क्यों मुझसे दूर है, क्यों बिछड़ा है। फिर भी हम पुकारते रहेंगे। सुनते हैं खूबसूरत सा नगमा।

0: 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर, पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
11: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
12: टैक्सी लाइसेंस,
11: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
11: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग,

मोहब्बत कभी कभी इंसान को कवि बना देती है, शायर बना देती है। ऐसे लोग जिनको कभी शायरी अच्छी नहीं लगती थी, अचानक किसी से मोहब्बत में, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर उन पर वारिद होने लगते हैं अशआर। और ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि ऐसे लोग बड़े ही रोमांटिक गुफ्तगू करते करते शेर बोलने लग जाते हैं, शेर लिखने लग जाते हैं। उनको खुद नहीं पता होता कि उनमें ये टैलेंट है। तो ये अभी तक मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को नोटिस किया है कि ऐसा अक्सर होता है, लेकिन क्यों ना सुनवा दूँ ऐसे ही फील पर बना हुआ एक सॉन्ग। सुनते हैं इस खूबसूरत से नगमे को। मैं कहीं

क्या चल रहा है आजकल, जो वबा है वो किस स्टेज पर है दुनिया भर में? मुझे लगता है कि बहुत कमी आ चुकी है इस तकलीफ में, इस वबा में, और मालिक ने कुछ रहम कर ही दिया है। पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से केसेस ख़त्म हो रहे हैं और नए केसेस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। आई विश, आई प्रे कि दुनिया भर में इस बीमारी से जो जो भी लड़ रहे हैं वो कामयाब हो जाएं और ठीक हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं। और सामीन, एक और बहुत खूबसूरत सा लम्हा, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगी।

तो कहना यही था, चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बुलाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत जल्द हम गुजर जाएंगे इस टाइम से, इस समय से, इस दुनिया से। दुनिया भी यही रहेगी, टाइम भी चलता रहेगा, रह जाएंगी हमारी बातें, हमारी यादें और ये आवाज़। बहुत ख्याल रखिएगा अपना और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

मुझे तो याद हो गया, आपके याद है? सुनाइएगा, सुनाइए ना।

0: 9:13 a.m. DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1439 पर 1439 के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारी ये नशात स्मार्ट ऐप पे अपने मोबाइल पे बिल्कुल मुफ्त सुन सकते हैं। और हमारी इस समय की ये नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और यही नशात इस वक्त रिले की जा रही है आपके अपने CVFM मिल्सबरा से 104.5 FM पे। और साथियों, अब प्रोग्राम रंग महफिल आपके मेजबान सैयद हसन नाजर हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलूस परा आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज सुन रहे होंगे, हमारी आवाज ने आप सभी सुनने वालों को खैरियत से पाया होगा। और अगर खुदा न खास्ता आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और सामिन, आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ निभाएंगी सना और तरन, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। जब तक वो आती हैं आपको चंद खूबसूरत गीत सुनाएंगे, और जी हाँ सामिन, आपको बताते चलें कि ब्रेडफोर्ड में मेला होने जा रहा है 15 और 16 अगस्त को। जी हाँ, 15 और 16 अगस्त सैटरडे और संडे, यानी कि 14 अगस्त है ना जुमे को, और ये मेला होगा 15 और 16 अगस्त को ब्रेडफोर्ड में लीड्स रोड फेस्टिवल, जिसमें इस बार इब्रारुल हक आ रहे हैं। जरूर आइएगा, इंशाल्लाह इस वक्त इस बार आप बहुत इंजॉय करेंगे मेला, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं, किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार भी आ रहे हैं, और दीगर आपके लिए बहुत से सरप्राइजेस वहां पे होंगे। और सामीन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप कॉल करना चाहें, स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 ब्रेडफोर्ड 01274306677। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत से, और गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम।

और समीन, अभी आप हमारे आज के इस प्रोग्राम का पहला गीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। हीर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप इस वक्त फ्रांस में हमें सुन रही हैं। अगला गीत आपके नाम है। तेज होती जा रही हैं धड़कने ऐसे नदीम, तेज होती जा रही हैं धड़कने ऐसे नदीम, जैसे अगले मोड़ पे वो बेवफा मिल जाएगा।

0: DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट,

0: फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज पैल सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियाँ फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर
4: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio.

और सामिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुश आमदीद। और नवीद राणा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी, इस वक्त आप स्वीडन में हमें सुन रहे हैं। अगला गीत आपके नाम करेंगे, यकीनन आज लाइव कॉल्स में आपसे मुलाकात भी होगी ऑन द एयर शायरी में।

0: देखिए सामीन, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा गीत, ये दिल आशिकाना। तो मैं भी बस अभी स्टूडियो में हाजिर हुई हूँ। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशामदीद आज की रंगे महफिल प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं हमारा बेफर एजियन रेडियो 1439 AM पे। आप हमारे स्टूडियो पे कॉल करके अपना अच्छा सा गीत और अच्छी सी शेर व शायरी और अच्छा सा गीत भी हमें सुना सकते हैं। हमारा स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677 पर। अगर आप हमें गूगल पे सर्च करना चाहते हैं या ऑनलाइन हमें सर्च करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट कॉल करती है www.bradfordasianradio.co.uk। अगर आप हमें यूके से बाहर सुन रहे हैं और हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं 07800599563 पर। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए। आपको अगर कोई सॉन्ग्स लगवाना है या कोई शेर शायरी करनी है या अच्छा सा गीत हम तक पहुंचाना है तो प्लीज़ आप हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं। तो जी, आज हम क्या लगाने लगे हैं और कौन सा गीत लगाएंगे?
1: जी हाँ, अगला गीत जो हमने क्यों कर रखा है, फूल मांगू ना बहार मांगू।
0: बहुत प्यारा गीत है, फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। क्या बात है, क्या बात।
1: हमारे सुनने वाले तो ऐसे डिजर्व करते हैं ना।
0: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रेफर्ड एजेंट रेडियो लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत खुशी से सुनते होंगे इसको।
1: जी जी जी, यूं करते हैं कि ये गीत सभी सुनने वालों के नाम करते हैं। जी बिल्कुल। इस गीत के बाद होती है आप सुनने वालों से मुलाकात।

0: जी सामीन, मुझे उम्मीद है कि आपको यह हमारा गीत बहुत पसंद आया होगा। फूल मांगू या ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। हमारे जो बक आउट देश के जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं और हमारी आवाम को भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगा होगा।
1: ये एक जमाना है जी, समझ लीजिए कि 15-20 साल पुराने जो गीत हैं, हाँ, आज भी यूं लगता है कि जैसे सदाबहार
0: के गीत हैं ये,
1: बिल्कुल नए गीत आते हैं
0: जी। इनके जो अल्फाज होते हैं, इनके जो इन्होंने शार बनाए हुए, वर्ड्स बनाए हुए, ये बहुत प्यारे अल्फाज बनाए हुए इन्होंने। आजकल के भी सॉन्ग्स अच्छे ही, जाहिर सी बात है, लेकिन जो हमारे पिछले जमाने के जो लोगों वाले सॉन्ग्स है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। क्लासिक सॉन्ग्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं।
1: एक लेवल है
0: जी हाँ, बिल्कुल प्यारे प्यारे अल्फाज हैं और बड़े इज्जत और एहतराम वाले अल्फाज हैं उनके अंदर। जी सामीन, आप हमारा रेडियो सुन रहे हैं, ब्रेफर्ड एजेंट रेडियो 1430 AM पर। अगर आप अपनी आवाज हम तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई अच्छा सा गीत हमसे लगवाना चाहते हैं, तो आपको आज हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 01274306677 पर। अगर आप हमें वेबसाइट पे भी सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.bradfordasianradio.co.uk पर। और अगर आप हमें UK से बाहर सुन रहे हैं और आप हमारे स्टूडियो पे से बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, अपना गीत हम तक पहुंचा सकते हैं 07800599563 पर। हाँ जी बिल्कुल, 0004। हमारा जो UK से बाहर के जो लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, तो प्लीज़ अगर आपको हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है या हमें कॉल करनी है, तो आप 0004 लगा के हमारे व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। हाँ जी, पैर वाला जीरो खत्म हो जाएगा, 0004 7800599563 पर हमें आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। तो चले जी, एक अच्छा सा और हम गीत लगा दें इनको प्यारा सा।
1: मेरे ख्याल में सुनने वालों को बताते चलें कि जो अगला गीत होगा, वैसे एक गीत अभी और भी हम चलाएंगे, तो जो इस घंटे का आखिरी गीत होगा, इसके बाद ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद
0: लाइव कॉल्स होंगी जी। तो अगर आप लाइव कॉल पे हमारे पास आना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो नंबर पे कॉल कर सकते हैं 01274303 3066 77 पर। तो प्लीज आप हमें कॉल कीजिए और अपनी अच्छे अच्छे गीत हम तक पहुंचाइए, अपने प्यारे प्यारे शेर व शायरी हमें सुनाइए, ताकि हम भी सुने और हमें पता चले कि आप हमारे प्रेफर्ड एजेंट रेडियो को कितना पसंद करते हैं। थैंक यू।

0: जी समीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये गीत बहुत पसंद आया होगा। रुखसार चौधरी साहब, थैंक यू सो मच आपने हमें कॉल किया है। अभी ब्रेक का वक्त होता जा रहा है तो हम कुछ ही देर में आपका गीत लगाते हैं आफ्टर ब्रेक के। थैंक यू। जी ब्रेक के बाद हमारी लाइव कॉल्स स्टार्ट हो जाएंगी जो कि 9 to 10 o'clock होती है, तो आप लोग प्लीज़ हमें कॉल करके हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं बेफोर एशियन रेडियो 1430 AM पर। आप हमें स्टूडियो नंबर पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर। थैंक यू।
1: 13 AM, DAB+, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 PM. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
7: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
12: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स,
13: ओल्ड मिस्टर मेलो में रंग भरने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: और इस अमीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगी महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। और अभी लाइन पे हमारे साथ कौन थी?
1: हीर।
0: जी जी, फ्रांस से।
1: हीर ने हमें फ्रांस से कॉल की है, तो बस वो भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहती है हमारे लाइव प्रोग्राम में।
0: लेकिन पहले शकील साहब।
1: जी, पहले शकील साहब ने हमें कॉल किया, तो हम उनको लेते हैं लाइव कॉल पे।
0: अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। शकील साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, शकील साहब गालबन रेडियो ऑन करके कहीं चले गए हैं या क्या मसला है?
1: हाँ, क्योंकि हमें हमारी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही है कानों में। आज मैं पता चल रहा बाकी हमारी आवाज बाकी बहुत प्यारी है रेडियो।
0: शकील साहब, आपको आवाज आ रही है तो बोलिए आगे से। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। शकील साहब कहाँ गए हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। शकील साहब की कॉल कट गई है और गालबन उन्होंने रेडियो ऑन कर रखा है, तो
1: फिर ऐसे करते हैं, हीर को ले लेते हैं कॉल पे।
0: जी जी, हीर से हम बात।
1: हीर हमारा इंतजार।

0: और सामीन हुआ कुछ यूं कि शकील साहब लाइन पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें हम आवाज देते रहे, लेकिन लगता है कि उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। तो अब हीर हमारे साथ फ्रांस से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हीर।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके?
0: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाओ, ठीक हो, खैरियत से हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, टिप टॉप मजे में। आप बताओ?
2: अस्सलाम वालेकुम हीर, कैसी हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। लगता है आपने कोई दुआ की थी जो आपकी दुआ कबूल होगी आज।
1: नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस नमाज पढ़ के उठी हूँ।
2: हाँ देखिए, बस दुआ थी ना, कबूल तो हो ही गई है ना।
0: सही सही असली में।
2: तो बताएं आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
1: सही सही। और आप लोग बताएं कैसा रहा आप लोगों का ये पूरा हफ्ता?
2: माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा,
0: और वीकेंड और अच्छा हो जाता है कि आप सुनने वाले से मुलाकात हो जाती है।
2: और स्पेशली हीरा जी जब आप आ जाती हैं कॉल पे, अच्छी अच्छी चीजें शेयर करने
1: से मुलाकात होती है
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: जी, तो आज सुनने वालों के लिए क्या तोहफा लाई हैं आप?
1: हाँ मैं सुनाती हूँ। कहते हैं कि गम की धूप में रोजने दीवार बहुत।
0: आहा, अच्छा है।
1: गम की धूप में रोजने दीवार बहुत, वक्त अच्छा हो तो होते हैं फिर यार बहुत।
0: क्या
2: क्या कहने हैं,
0: फिर से पढ़िएगा, अच्छा शेर है, वाह वाह।
1: गम की धूप में रोजने दीवार बहुत, वक्त अच्छा हो तो होते हैं फिर यार बहुत।
0: और हीर मुझे इससे एक और शेर याद आ गया, उस इसी बात के बिल्कुल मुखालफत में वो शेर है, यूं कि होता नहीं किसी का कोई बुरे वक्त में शरीक, होता नहीं किसी का कोई बुरे वक्त में शरीक, पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से दूर।
1: अरे वाह, क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब
0: जी।
1: आगे कहते हैं कि तेरी आंखें हैं क्या कि समंदर है कोई।
0: आहा, तेरी आंखें हैं कि समंदर है कोई।
1: तेरी आंखों में डूबे हैं मैं ख्वार बहुत।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि मैं तेरी आंखों में डूबा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरी आंखों में डूबा तो नहीं हूँ, लेकिन इनमें कहते हैं समंदर किसी गहराई है।
1: अरे वाह, क्या कहने जी,
2: क्या बात है,
1: बहुत खूब।
0: और आंखों के हवाले से एक और शेर
1: जी,
0: एक और शेर याद आ रहा था आंखों के हवाले से।
1: हां जी।
0: अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरम हूँ, मुझे डूब के मर जाने दे।
2: क्या बात है, क्या बात है, हीर नंबर ले गए।
0: सही सही जी जी।
1: चलिए जी, मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ। कहते हैं कि तेरी आंखों में डूबे हैं मैं ख्वार बहुत, गम गम करते हैं नुमाया मेरे शेर यहाँ।
0: मैं आपको अगला शेर नहीं पढ़ने दूंगा, एक और शेर यहाँ। कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है।
2: क्या बात, क्या बात,
1: क्या कहने जी, क्या कहने। लगता है आपने जो है ना इस पे PhD की हुई आंखों पे,
2: आंखों पे भी और शेरो शायरी पे भी। शेरो शायरी पर भी
0: कहते ना, तेरी आंखों को देखने वाले, तेरी सूरत को देखने वाले अपनी आंखों से प्यार करते हैं।
1: क्या कहने जी, क्या कहने। आप मुस्तकबिल के जो है ना बहुत बड़े शायर बन रहे हैं,
2: बन चुके हैं कि
0: दुआ करें।
2: आई थिंक इनका रेडियो एसी शेर शायरी पे तो मोस्टली फेमस हो चुका है।
1: बस फिर मैं और जो है क्या नाम है आपकी कोलीग, हम दोनों जो है आपकी छत्र छाया में है।
2: हाँ बिल्कुल, ऐसी बात है, हमने सीखना है इनसे।
0: जरूर जरूर
1: जी।
0: अच्छा,
1: तो फिर आगे कहते हैं कि मैं दोबारा पढ़ती हूँ। कहते हैं कि गम करते हैं नुमाया मेरे शेर यहाँ, वरना तो सभी कहते हैं इशार बहुत।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत तुमको सुनाने के लिए हैं।
1: हाय हाय हाय, लगता है ये शेर मेरे लिए आपने संभाल के रखे हुए थे।
2: सही बात है,
1: पता लग गया था कि मैं ये पढ़ने वाली हूँ आज। हाँ
0: जी।
1: फिर आगे कहते हैं कि कोई दिल तो कोई रूह लिए फिरता है। कोई दिल तो कोई रूह लिए फिरता है, देखे हैं तेरे कूचे में बीमार बहुत।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि दिल में होता तो किसी तौर निकल भी जाता, दिल में होता तो
2: तो
0: किसी
2: किसी
0: तौर
2: तौर
0: निकल भी
2: निकल
0: जाता।
2: भी जाता।
0: अब तो वो शख्स बहुत दूर तलक है मुझ में।
2: क्या बात है,
1: क्या बात है जी,
2: अब तो वो शख्स कहीं दूर तलक है मुझ में। क्या बात
1: आगे
2: है।
1: मैं तो ये कहूंगी आपको कि हमदर्दी जता मेरा तमाशा ना बना।
0: हाँ हाँ, क्या कहने।
1: हमदर्दी जता मेरा तमाशा ना बना है, इसके लिए तो मेरे बहुत
0: बहुत अच्छे,
2: बात,
0: बहुत अच्छे।
2: क्या बात
0: है। वो कहते हैं ना कि हर मोड़ पे मिल जाते हैं हम दर्द हजारों, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हम दर्द हजारों, शायद के मेरी बस्ती में अदाकार बहुत है।
2: क्या बात है, क्या बात है।
1: हम सब अदाकारी ही तो कर रहे हैं।
2: हाँ तो सही बात है। ये शेर शायरी पे अदाकारी है ना।
0: शायरी भी तो अदाकारी है, सही है।
1: कहते हैं कि कट जाता है रो पीट के दुनिया का सफर।
0: हाँ हाँ,
1: कट जाता है रो पीट के दुनिया का सफर, वरना वरना जिंदगी है यहाँ दुश्वार बहुत।
0: दुश्वार बहुत,
2: क्या
0: बहुत
2: बात है,
0: बहुत
2: खूब।
1: रब ने दिया है तो इतरा के ना चल।
0: वाह वाह।
1: रब ने दिया है तो इतरा के ना चल, मैंने दर पे देखे हैं सरदार बहुत।
2: क्या वाह
0: वाह वाह,
2: क्या
0: बहुत
2: बात,
0: अच्छे,
2: बहुत अच्छे,
0: बहुत अच्छे। बहुत कहते हैं ना कि फैले हुए हाथों को इकारत से ना देखो, हर एक के दर पे ये सवाल ही नहीं,
2: नहीं
0: आता।
2: सही बात है।
1: हाय हाय, क्या कह रहे हैं जी। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जी आपकी समातों का। अगर आपके पास टाइम हुआ तो मैं और सुना दूं।
0: जी जी सुनाइए सुनाइए, आज हम तन घोष हैं, आपने क्या जादू कर दिया सना पे।
2: हीर की आवाज हो और जादू तो हम पे चल ही जाएगा।
1: शेर कहते हैं कि बख्त के तख्त से, बख्त के तख्त से यक
0: यक यक लख उतारा हुआ शख्स इस वक्त एक है। वो कहता मुझे कहीं का भी बना दो, मुझे कहीं का भी बना दो,
2: मैं बन जाऊंगा। मुझे कहीं का भी बना दो।
0: जी जी सुनाइए।
1: आते कहते हैं कि बख्त के तख्त से यक लख उतारा हुआ शख्स, तूने तूने देखा है कभी जीत के हार हुआ शख्स।
0: मुझे क्यों नहीं कहा। चलिए आगे सुनाइए। जी जी।
1: हम तो मुक्तल में भी आते हैं फसद शोक व
0: नियाज़।
1: हम तो मुक्तल में भी आते हैं फसद शोक व नियाज़, जैसे जैसे आता है मोहब्बत से पुकारा हुआ शख्स।
0: बहुत
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: तब
2: बहुत
1: किसी कुर्ब की जन्नत का तमन्नाई है। कभी कब किसी कुर्ब की जन्नत का तमन्नाई है, ये तेरे हिज्र के दोजख से गुजारा हुआ शख्स।
0: बहुत
2: बहुत बहुत बहुत खूब।
1: बाद मुद्दत के वही ख्वाब है फिर आंखों में। बाद मुद्दत के वही ख्वाब है फिर आंखों में, लौट लौट आया है कहीं जाके सुधारा हुआ शख्स।
0: बहुत अच्छे,
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: अब अंधेरे हैं कि लेते हैं बलाएं इसकी।
0: आहा।
1: अब अंधेरे हैं कि लेते हैं बलाएं इसकी, रोशनी रोशनी बांट गया दीप पे वारा हुआ शख्स।
0: बहुत
2: क्या
0: अच्छे
2: बात है,
0: बहुत अच्छे।
2: क्या बात है।
1: मौत के जबर में ढूंढी है बना ही उसने।
0: आहा।
1: मौत के जबर में
0: ढूंढी है पनाह
1: है
0: उसने,
1: जिंदगी ये है, जिंदगी ये है तेरे लुत्फ का
0: मारा हुआ शख्स। क्या
2: बात है।
0: कहते ना कि अब तो, कहते ना कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे।
2: किधर जाएंगे।
1: हाँ हाँ हाँ, क्या कहने हैं जी, साथ वालों के साथ पास जाइए ना, उनसे कहिए कुछ सुनाए।
0: अच्छा चलिए, राम सना से कहते हैं सना।
2: मेरे मेरे एक फ्रेंड ने मेरे लिए भी ये भेजी है, तो चलो आपको सुनाती हूँ। तेरी आंखों की सहूलत हो मयसर जिसको, तेरी आंखों की सहूलत हो मयसर जिसको,
1: सहूलत मयसर हो जिसको,
2: वो भला चांद सितारों को कहाँ देखेगा।
0: क्या कहने, क्या
1: क्या बात है।
2: रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारे को कहाँ देखेगा।
0: क्या कहने, क्या वो कहते हैं ना कि ए दिल तमाम नफा है सौदाए इश्क में, ए दिल तमाम नफा है सौदाए इश्क में, एक जान का जया है सो ऐसा जया नहीं।
2: क्या बात है, क्या बात है,
1: बहुत बहुत खूब जी, बहुत खूब, वेरी नाइस जी।
0: जी जी आज के लिए इतना ही, और अशार हैं कुछ? चलिए एक दो शेर सुनाइए, हमारे एक और कॉलर भी लाइन पे हैं, तो आप एक एक दो शेर सुनाइए और फिर आपसे हम इजाजत लेंगे।
1: चलिए नहीं, आप उनको ले लीजिए, मैं दो ऑलरेडी सुना चुकी हूँ।
0: चलिए चलिए ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आपके लिए हमारी जानिब से बहुत सी तालियां, सलामत रहें, खुश रहें।
1: बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया जो बर्दाश्त करते हैं मुझे, थैंक यू सो मच।
0: अल्लाह
2: अल्लाह
1: शुक्रिया।

0: और सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, लाइव गर्ल्स का सिलसिला जारी और सारी है। तशरीफ ला सकते हैं आप, नंबर मिला सकते हैं आप, नंबर बताइएगा सुनने
1: जी सामीन। अगर आपको हमारे रेडियो पे कॉल करनी है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आप 1430 पर भी सुन सकते हैं, और आप हमें स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर। जी अभी हमारे पास हमारी कॉल लाइव कॉल पे आ गई।
0: जी हाँ सामीन, अब हमारे साथ मैनचेस्टर से हमारे बहुत ही रेगुलर कॉलर जनाब रुखसार चौधरी साहब तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम
2: जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।
0: जनाब क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से आप?
2: मेरी आवाज आपको आ रही है?
0: जी जी परफेक्टली, बड़ी मजे की साफ शफाफ आवाज आ रही है आपकी।
2: मुझे आपकी आवाज बहुत ही लाइट आ रही है।
0: अब बेहतर है कुछ?
2: जी अब थोड़ी सी जी बेहतर हो गया,
0: मैंने और इम्प्रूव कर दिया, अब लेवल और हाई कर दिया। जी जी
2: जी, सबसे पहले तो माशाल्लाह चश्मे रोशन दिले माशा, आप बहुत ही आला बावकार बाव इज्जत मेरे प्यारे भाई पीर हसन जा साहब, अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।
2: और आपके साथ जो हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम मोहतरमा मुकरमा, मेरे लिए नहायत काबिल इज्जत काबिल रिस्पेक्ट जनाब मोहतरमा सना जी, उनको भी अथाह दिल की गहराइयों से मोहब्बतों भरा चाहतों भरा उल्फत भरा अनायत मोहब्बत अकीदत और उनसे बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।
2: माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम, और अभी जो सिस्टर आई थी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शायरी कर गई, आपने भी माशाल्लाह, वो कहते हैं ना खूब उनका साथ नवाया, बल्कि कहते हैं ना खूब मुकाबला किया उनका, क्या कहते
0: हैं इसे, कहते हैं बैतबाजी शेर के बदले में शेर, शेर के बदले में शेर।
2: अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके रेडियो की पूरी टीम को, जहां जहां तक आपके रेडियो की आवाज जा रही है सभी को अल्लाह ताला अपनी जमान में रखे। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है कि ब्रेक का टाइम भी बहुत ही करीब है,
0: ऐसे
2: तो इसलिए, और मैं आपके और माशाल्लाह इतने खूबसूरत जो कॉलर आते हैं शेयर आते हैं उनके दरमियान ज्यादा हैल नहीं होना चाहता, और मेरी तरफ से जनाब पीर सैयद राब हैदर को बहुत बहुत सलाम, मोहतरम शकील साहब है, जंगीर साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, महबूब लाई भाई हैं, चौधरी फरियाद हैं, और मोहतरम राणा नवीद साहब हैं, और भाई परवेज साहब, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और एक मासूम सी पोएट्री लेके आया हूँ मैं आपके लिए,
0: इनायत कीजिए।
2: शेर लिखता है, जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नदान हैं शोलों को हवा देते हैं,
0: क्या कहने क्या कहने, वाह वाह
2: बहुत शुक्रिया। हमसे दीवाने कहीं तरके वफा करते हैं, जान जाए के रहे बात नभा देते हैं,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: आप दौलत के तराजू में दिलों को तोलें, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते
0: हैं,
1: क्या बात है, बहुत खूब,
2: थैंक यू। ये आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार है, ये आपका आला जरफ है। तखत क्या चीज है और लाहलो जवार क्या है, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं,
0: बहुत अच्छे।
2: आखिरी शेर आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ, हमने दिल दे भी दिया ऐद वफा ले भी लिया, आप अब शोक से दे लें जो सजा देते हैं,
0: क्या कहने क्या कहने,
1: क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब,
2: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको अपनी जुमान में रखें, और मेरे बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं, और इस खलूस के साथ जा रहा हूं कि आप भी मुझे अपनी नेक दुआ में याद रखें,
0: इंशाल्लाह सलामत रहे, और आपके लिए हमारी जानिब से बहुत
1: सारी तालियां, अल्लाह
0: हाफिज। और सामीन अभी टेलीफोन लाइन पे मैनचेस्टर से हमारे साथ थे जनाबे रुखसार चौधरी साहब, शुक्रिया इनका अदा करते हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता शायरी सुनाने में मास्टर हो गई हैं, माहिर हो गई हैं सना भी। सना कौन सी शायरी आपके पास?
1: जी मैं अपने सामीन के लिए जो है अर्ज करूंगी, किसने कहा तुझे अनजान बन के आया कर,
0: किसने कहा तुझे अनजान बन के आया कर,
1: किसने कहा तुझे अनजान बन के आया कर, मेरे दिल के आईने में मेहमान बन के आया कर,
0: क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
1: पागल एक तुझे ही तो बख्शी है, पागल एक तुझे ही तो बख्शी है दिल की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है तू सुल्तान बन के आया कर,
0: बहुत अच्छी है बहुत अच्छी, क्या कहने,
1: कैसी लगी है,
0: जबरदस्त
1: अच्छी लगी है। कुछ अब आप सुना दे,
0: कुछ और आप सुना दो, फिर जी जी
1: ठीक है। हम भी शिकस्ताए दिल है, हम भी शिकस्ताए दिल हैं, परेशान तुम भी हो, अंदर से रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो।
0: वाह वाह।
1: हम भी शिकस्ताए दिल हैं, परेशान तुम भी हो, अंदर से रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो, हम भी हैं एक जुड़े हुए शहर की तरह, हम भी एक जुड़े हुए शहर की तरह आंखें बता रही हैं कि वीरान तुम
0: भी हो। आंखें ने मोहसिन नकवी की गजल बहुत प्यारी लगी है, बहुत ही खूबसूरत थी कि आपके शेर में लफ्ज आ रहा था रेजा रेजा, तो उससे मुझे एक शेर याद आ गया कि रेजा रेजा हो के बिखरा है फजाओं में बदन, रेजा रेजा हो के बिखरा है फजाओं में बदन, किस कदर महंगी पड़ी है चांद से यारी मुझे।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: और गालबन थोड़ी देर में हम चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हमारे वो सुनने वाले जो लाइव दोबारा आना चाहें, शकील साहब आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, आप कोशिश करें कि जल्दी से आप कॉल मिलाइए, नवीद साहब आपका हम इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से आप भी तशरीफ लाइए, आप दोनों में से जिसकी कॉल पहले मिल गई वो ऑन द एयर, और फिर इंशाल्लाह हमारे पास अभी ब्रेक के बाद भी हमारे पास कमोबेश होगा टाइम, तकरीबन 25-30 मिनट होते हैं। आप सुनने वालों को नंबर बता दीजिए।
1: जी सामीन, अगर आपको हमारे स्टूडियो पे कॉल करनी है तो आप हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर।
3: On 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app.

0: ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काकी की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
10: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
11: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
10: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा, पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
10: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड,

0: और सामिन अब इन तालियों की भरपूर गूंज में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं स्वीडन से हमारे बहुत ही मोहतरम सामे जनाबे नवीद राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: जनाबे वाला क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक है मोहतरम?
1: अल्लाह का शुक्र हसन भाई, बहुत मेहरबानी, आप सुनाइए आपके मिजाज।
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, सब खैरियत सब ठीक है।
1: और मोहतरमा कैसी हैं? सना साहिबा को भी सलाम।
2: अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
1: जी अल्लाह का बड़ा करम। चाहता था कि मोहब्बत का निशान बाकी रहे, चाहता था कि मोहब्बत का निशान बाकी रहे, मैंने सब जख्म भरे जख्म जिगर छोड़ दिया।
0: क्या कहने,
1: मेरा दुश्मन मेरे बारे में बड़ा जानता है, उसने दस्तार उछाली मेरा सर छोड़ दिया।
0: फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा।
1: चाहता था कि मोहब्बत का निशान बाकी रहे, मैंने सब जख्म भरे जख्म जिगर छोड़ दिया, मेरा दुश्मन मेरे बारे में बड़ा जानता है, उसने दस्तार उछाली मेरा सर छोड़ दिया।
0: और मुझे इससे एक शेर याद आया कि मेरे इखलाक से वो वाकिफ था बहुत, मेरे इखलाक से वो वाकिफ था बहुत, मेरा सर मांग लिया बन के सवाली उसने।
2: क्या बात है,
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजम, दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजम, हर साहिब दस्तार मुअज्जज नहीं होता।
2: बहुत खूब,
1: वाह वाह वाह। मुझे रुतबाए गम बताना पड़ेगा, मुझे रुतबाए गम बताना पड़ेगा, अगर मेरे पीछे जमाना पड़ेगा।
0: क्या कहने,
1: बहुत गमजदा दिल है कलियों के, लेकिन सूलन इन्हें मुस्कुराना पड़ेगा।
0: बहुत अच्छे,
2: बहुत अच्छे।
1: सुकून ढूंढते आए थे मैं कदा में, यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा।
0: क्या कहने, क्या कहने।
1: खबर क्या थी जश्न बहारा की खातिर हमें आशियाना जलाना पड़ेगा।
0: मैं बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे,
1: घर देखे हैं। बहार अब नए गुल खिलाने लगी है, खिजा को चमन में बुलाना पड़ेगा।
0: बहुत खूब।
1: सकूते मुसलसल मुनासिब नहीं है, असीरो तुम्हें गुल मचाना पड़ेगा।
0: क्या कहने, क्या कहने।
1: फना तुम तो शायर, फना तुम हो शायर तो अफसानाए गम गजल की जुबानी सुनाना
0: सुनाना पड़ेगा। बहुत खूब।
1: ये फना निजामी,
0: ये फनार निजामी वो हैं कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने सबसे ज्यादा इनकी कवालियां जो हैं वो की हैं, सबसे ज्यादा इनकी शायरी उन्होंने इस्तेमाल की है।
1: जी
0: जी, जी।
1: वो कुछ ऐसा है ना, इनके एक चंद अशआर में आपकी नजर करता हूँ कि ये जरा गौर तलब है अंदाज इनका, थोड़ा सा आप समझिए हसन भाई के।
0: जी जी,
1: थोड़ा वो दिलदाना है।
0: जी जी, होता है, होता है।
1: हुस्न का एक आह ने चेहरा निढाल कर दिया, हुस्न का एक आह ने चेहरा निढाल कर दिया, आज तो ऐ दिले हजी तूने कमाल
0: कमाल कर दिया।
2: क्या बात है,
1: सहना सहना सहता रहा जफाए दोस्त, कहता रहा अदाए दोस्त।
0: वाह वाह।
1: सहता रहा जफाए दोस्त, कहता रहा अदाए दोस्त, मेरे खलूस ने मेरा जीना मुहाल
0: मुहाल कर दिया। कहते हैं ना कि मिजाज पूछने वाले ही जान ले लेते, मिजाज पूछने वाले ही जान ले लेते, मैं अपने शहर में होता तो मर गया होता।
2: क्या बात,
1: मर गया होता। वाह वाह वाह। और क्या खूब शेर है, सुनिएगा जरा आपकी नजर खास से शाहजी के।
0: जी जी।
1: मैं कदा में है कहत मैं कदा में है कहते मैं, या कोई और बात है, पीरे मुगा ने क्यों मुझे जाम संभाल कर दिया।
0: मेरे लिए हराम थी उसके लिए हलाल, मेरे लिए हराम थी उसके लिए हलाल, कमबख्त किस तरह मुझे बहका के पी गया।
2: क्या बात है,
1: वाह वाह वाह। जितने चमन परस्त थे साया गुल में मस्त थे, जितने चमन परस्त थे साया गुल में मस्त थे, मस्त थे, अपना रूजे गुलस्तान नजरे जवाल कर दिया।
0: बहुत बहुत।
1: और खुद मेरा सोजे खुद मेरा सोल जाग उदास, छेड़ सका ना दिल का साग। खुद मेरा सोजे जाग उदास, छेड़ सका ना दिल का साग, आपकी एक निगाह ने साहिबे हाल कर दिया।
0: हाल कर दिया।
1: हाय हाय। और बज्म में सारे अहले होश उनके सितम पे थे खामोश। बज्म में सारे अहले होश उनके सितम पे थे खामोश, एक जुनून परस्त ने उठकर सवाल दे दिया।
0: क्या कहने, क्या कहने।
2: बहुत खूब।
1: लुत्फ फिराक यार ने लज्जत इंतजार ने, लुत्फ फिराक यार ने लज्जत इंतजार ने, दोरे दिलो निगाह दूर दिलो निगाह से शौके विसाल कर
0: विसाल कर दिया। बहुत अच्छा।
1: और सुन के बयान मैं कदा, देख के शाने मैं कदा, शेखे हरम ने पी फना मैं को हलाल कर दिया।
0: बहुत खूब, बहुत
2: खूब।
1: सुन के बयान मैं कदा, देख के शाने मैं कदा, शेखे हरम ने पी फना मैं को हलाल कर दिया।
0: और मुझे कैफी आजमी का वो शेर इसे अक्सर याद आ जाता है कि बहुत ही खूबसूरत पीने पिलाने से के हवाले से शेर था कि کیفی اعظمی کا شعر تھا
1: جی جی,
0: کہ مہنگی شراب ہو گئی کیفی نے چھوڑ دی, مہنگی شراب ہو گئی کیفی نے چھوڑ دی, کافر کو مفلسی نے مسلمان بنا دیا.
2: کیا بات ہے,
1: واہ واہ واہ, بہت خوب. آپ کے واسطے حرام صحیح, ہم پیئیں تو ثواب بنتی ہے, سو غموں کو نچوڑنے کے بعد ایک قطرہ شراب بنتی.
0: کیا کہنا, بہت خوب بہت خوب.
1: تو یہ آپ کی نظر تھا, بہت اچھا محسوس کیا جی, آج آپ کی محفل کو بڑا انجوائے کیا, اور مجھے شاید لگ رہا تھا کہ آپ آنے نہیں آئیں گے, میں نے باہر آپ سے سوال کیا, اچھا ہوا کہ بہت خوبصورت محفل, اور انتظار رہے گا شکیل بھائی بھی آئے
0: جی جی,
1: تو مطلب چار چہن لگ جائیں گے.
0: ایک جاتے جاتے ایک شعر سنا کے جائیے گا, اور آج نگاہ حسین صاحب کی بھی کال موصول ہوئی تھی پشاور سے, ہمارے بہت ہی محترم سننے والے ہیں اور بڑے اہل ذوق ہیں شاعری پہ ان کا, انہوں نے ایک شعر سنایا تھا, میں یاد کر رہا ہوں, اگر مجھے یاد آ گیا تو ان کا شعر آپ کے نام کروں گا, بہت خوبصورت شعر.
1: ادروائز میرا خیال ہے اطفال ساجد صاحب کے چند اشعار ہیں, اگر
0: جی جلدی جلدی سے سنا دیجیے تاکہ ہم شکیل صاحب کے لیے جی
1: اقبال عظیم صاحب, اگر تو آگے شکیل بھائی تو انہیں لے لیجیے,
0: نہیں پہلے آپ سنا دیجیے تاکہ پھر ہم.
1: یہ تو کافی معروف ہے لیکن آپ کی نظر کر کے اچھا لگا کہ مجھے اپنے ضبط سے ناز تھا سر بزم رات, یہ کیا
0: ہوا,
1: میری آنکھ کیسے چلک گئی, مجھے رنج ہے یہ برا ہوا, میری زندگی کے چراغ کا یہ مزاج کوئی نیا نہیں, ابھی روشنی ابھی تیرگی, نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا, مجھے جو بھی دشمن جا ملا وہی پختہ خار جفا ملا, نہ کسی کی ضرب غلط پڑی نہ کسی کا تیر خطا ہوا, مجھے آپ کیوں نہ سمجھ سکے یہ خود اپنے دل سے پوچھئے, میری داستان حیات کا تو ہے ورک ورک کھلا ہوا, اور جو نظر بچا کے گزر گئے میرے سامنے سے ابھی ابھی,
0: یہ اس غزل کا سب سے پیارا شعر ہے, اس غزل کا سب سے پیارا یہ شعر ہے جی جی,
1: جو نظر بچا کے گزر گئے میرے سامنے سے ابھی ابھی, میرے ہی شہر کے لوگ تھے,
0: میرے گھر سے گھر ہے ملا ہوا,
1: اور ہمیں اس کا کوئی بھی حق نہیں کہ شریک بز میں خلوص ہوں, نہ ہمارے پاس نقاب ہے نہ کچھ آستی میں چھپا ہوا. مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا, یہ شعر ہے عجیب کمال حسن بھائی, کہ مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا کسی بد نصیب کا خط ملا,
0: کہیں آنسو سے آئے ہائے ہائے,
1: کہیں خون دل سے لکھا ہوا کہیں آنسو سے مٹا ہوا, اور مجھے ہم سفر بھی ملا کوئی تو شکست حال میری طرح, کئی منزلوں کا تھکا ہوا کہیں راتوں میں لٹا ہوا, اور ہمیں اپنے گھر سے چلے ہوئے سر راہ عمر گزر گئی,
0: واہ واہ,
1: کوئی جستجو کا سلا ملا نہ سفر کا حق ہی ادا,
0: بہت خوب بہت خوب, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا,
1: یہ کہتے ہی نوید اب بھرا ہوا, بہت شکریہ,
0: اللہ حافظ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, آپ کے لیے بہت سی تالیاں ہماری جانب سے,
1: اللہ حافظ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.

0: और क्या कहने हमारे मोहतरम और मुआज़्ज़ज़ सुनने वालों के लिए कि तशरीफ़ लाते हैं और महफिल को चार चांद लगाते हैं। अगर ये प्रोग्राम एक गुलदस्ता है तो सभी सुनने वाले इसके फूल हैं, क्या कहती हैं आप?
1: बहुत बहुत खूब, लगा दें।
0: हर सुनने वाला ही अपना एक भरपूर रंग लेके तशरीफ़ लाता है।

0: और रजिया सामिन जिस तरह पाकिस्तान ट्रकों के पीछे लिखा होता ना, वो आ गया जिसका इंतजार था। तो शकील साहब का हमें बहुत इंतजार था, तो अल्लाह अल्लाह करके शकील साहब भी आ गए हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शकील साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बहना?
0: अल्लाह का शुक्र है।
2: अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। हमें आपकी कॉल का इंतजार था।
1: शुक्रिया, तो बहुत बहुत मेहरबानी। अभी आवाज आ रही है लेकिन इतनी
0: जी
1: नहीं आ रही।
0: मैं अपनी आवाज और फर्दर ऊंची कर देता हूँ, अब आपको आएगी। जी, अब आवाज आपको और ज्यादा अच्छी आएगी।
1: तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मेरा एक खालिस अली मीर साहब है, अली भाई है, चौधरी रुखसार साहब है, नवीद भाई, चौधरी फरियाद साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब है, महबूबुल्लाही, तारिक भट्ट और भी जितने सुनने वाले हैं, सारिया बहन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: तो एक गजल है, नसीर अहमद नासिर लिखने वाले हैं।
0: जी जी।
1: वो कहते हैं, लज्जत उल्फत से कोई आशना होता नहीं।
0: लज्जत उल्फत से कोई आशना होता नहीं,
1: जब तक दो दिलों के बीच फासला होता नहीं।
2: क्या बात है, क्या कहने,
0: क्या कहने, जबरदस्त।
1: शुक्रिया। मुझको इस दर्जा नवाजा है किसी के इश्क ने,
0: मुझको इस दर्जा नवाजा है किसी के इश्क ने, मुनकता अब रंजो गम का सिलसिला होता नहीं।
2: बहुत बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: बेवफाई से तेरी मैं खूब वाकिफ हूँ मगर,
0: वाह,
1: बेवफाई से तेरी मैं खूब वाकिफ हूँ मगर, अपने दिल को क्या करूँ मुझसे गिला होता नहीं,
2: होता ही नहीं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: शुक्रिया। बस तभी तक तेरी खुशफहमी का है भरम, जब तक आईने से तेरा सामना होता नहीं।
0: बहुत खूब,
2: बहुत खूब।
1: ख्वाहिशें कर देती हैं माइल बुराई की तरफ,
0: ख्वाहिशें कर देती हैं माइल बुराई की तरफ,
1: वरना कोई आदमी आज खुद बुरा होता नहीं।
0: क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: शुक्रिया। बात तो जब है पसे तोबा रहे साबित कदम,
0: बात तो तब है पसे तोबा रहे साबित कदम,
1: सिर्फ तोबा करके कोई पारसा होता नहीं।
0: क्या कहने, कहते ना कि तोबा की फिर तोबा की, हर बार तोबा तोड़ दी। शकील साहब, कि तोबा की फिर तोबा की, हर बार तोबा तोड़ दी, मेरी इस तोबा पे तोबा तोबा तोबा कर उठी।
1: तो आखिरी शेर कहते हैं,
0: जी जी।
1: पूजता है हर कोई चढ़ता हुआ सूरज नसीर,
0: पूजता है हर कोई चढ़ता सूरज नसीर, वाह,
1: डूबता सूरज किसी का भी खुदा होता नहीं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, क्या हकीकी शायरी है, वाह वाह।
1: शुक्रिया
0: जी जी।
1: तो अगर टाइम हो तो एक सुना दूंगा।
0: जी जी, एक और सुना दीजिए। जी,
1: जैमिनी सरशार इनका नाम है।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: जब कुल पर आफत आती हो, जब मुल्क पड़ा हो मुश्किल में,
0: वाह वाह,
1: जब कौम पर आफत आती हो, जब मुल्क पड़ा हो मुश्किल में, इंसान वो क्या मर मिटे, मर मिटने का एहसास ना हो जिसके दिल में।
0: आहा, क्या कहने, बहुत खूब।
1: हंसने का तरीका पैदा कर, रोने का सलीका पैदा कर,
0: वाह वाह,
1: हंसने का तरीका पैदा कर, रोने का सलीका पैदा कर, हंस फूल की सूरत गुलशन में, रोशमा की सूरत महफिल में।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: कातिल के दिल की कमजोरी ने सारा काम बिगाड़ दिया,
0: वाह वाह,
1: कातिल के दिल की कमजोरी ने सारा काम बिगाड़ दिया, हम तिश्नाए शोक शहादत थे, खंजर भी था दस्ते कातिल में।
0: वाह वाह, कहते ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: महफिल की महफिल बेहिस है,
0: वाह वाह,
1: महफिल की महफिल बेहिस है, तारी है जमूद इंसानों पर, उठ सोच का आलम बर्पा कर, और आग लगा दे हर दिल में।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: शुक्रिया। हर कतरा दरिया बनते बनने को बेताब दिखाई देता है,
0: वाह वाह,
1: हर कतरा दरिया बनने को बेताब दिखाई देता है, हर मोजे रवा बेचैन नजर आती है फिरा के साहिल में।
0: कहते हैं ना कि ये बात जर्फ की है मगर किससे कीजिए, ये बात जर्फ की है मगर किससे कीजिए, कतरा भी आजकल है दरिया बना हुआ।
2: क्या बात है,
1: सर आपसी शेयर करते
2: हैं
1: बहुत। सर वो क्यों कर कहते हैं हम कौम वतन के खादिम हैं?
0: आहा
1: सरशार, वो क्यों कर कहते हैं हम कौम वतन के खादिम हैं? डाले न गए जो जिंदा में, जिकड़े न गए जो सलासिल में।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
2: बहुत
0: अच्छा।
1: तो ठीक है भाई,
0: बहुत शुक्रिया आपके लिए हमारी जानिब से, बहुत सी तालियां, सलामत रहिए, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे।
1: अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़।

0: जी सामीन, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारी सी शेर व शायरी। हमारे साहब थे जो आए थे, हमारे क्या नाम है, शकील साहब थे।
1: शकील
0: साहब, पहले इनकी कॉल ड्रॉप हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा हमें कॉल की। थैंक यू सो मच हमें स्टूडियो पे कॉल करने का और हमें बहुत अच्छे अच्छे
1: और याद कर रहे थे। उस्मान भाई शफील से अक्सर तशरीफ लाते हैं और अभी तक उनकी कॉल मौसूल नहीं हुई है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो भी आ जाएं तो उनसे भी हम कुछ सुन लें। और आज ही बात हो रही थी, निगाह हुसैन साहब पिशावर से इनका ताल्लुक है, बहुत ही खूबसूरत शायरी सुनाते हैं, तो उनसे भी हमने इल्तमास की थी कि आज रात को प्रोग्राम है, अगर इस वक्त सुन रहे होंगे तो वो भी तशरीफ लाएंगे। बड़े ही खूबसूरत
0: स्टूडियो के टाइम में काफी टाइम है, तो अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं और अपनी प्यारी सी आवाज हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल कीजिए।

0: और समीन अभी इन्हीं तालियों की भरपूर गूंज में हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त भाई और लिंक एफएम के प्रेजेंटर जनाबे आबद मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। आवाज इधर से तो हमने खासी बढ़ा रखी है, अब मैं देखता हूँ कि आवाज
1: अब ठीक हो गई है।
0: जी जी जी, मैं फर्दर इसे और इम्प्रूव करता हूँ। जी जी
1: जी जी, आ रही है आवाज।
0: जी जी, आपकी बेहतरीन आवाज आ रही है। तो आज सुनने वालों के लिए क्या तोहफा लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज?
1: सर जी, आपको पता है मुझे शेर शायरी इतनी आती नहीं है,
0: लेकिन जो पोटवारी के आप अशार सुनाते हैं, क्या कहने उनके, जो आप आपके प्रोग्राम में जो शायरी होती है पोटवारी की?
1: थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम पसंद करते हैं। तो मैं सुन रहा था प्रोग्राम, तो मैंने सोचा रंगे महफिल की जो दरबार है इसमें हाजिरी लगवानी जरूरी है।
0: बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपका, मोहतर सलामत रहें।
1: तो मैं बस सिर्फ हाजिरी लगवाना चाहता था
0: जी,
1: इसलिए मैंने आपको फोन।
0: प्रोग्राम पसंद आ रहा है, सुन रहे हैं
1: जी?
0: प्रोग्राम पसंद आ रहा है आपको?
1: बहुत मजा आ रहा है, इसलिए तो फोन करने पे मजबूर हो गया हूँ।
0: बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया, बहुत
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: तशरीफ आते रहिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।

0: और रजिया सामिन अभी हमारे साथ आबद मुगल साहब शेफील्ड से लाइन पे मौजूद थे, बेहद शुक्रिया इनका अदा करते हैं। और हमारे पास यूं कह लीजिए कि तकरीबन 6-7 मिनट रहते हैं, अगर आप में से कोई भी सामने आना चाहे तो आप तशरीफ ला सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हर सुनने वाले को इस प्रोग्राम में कम अज कम एक मौका जरूर मिले। और अब मैं देख रहा हूं कि सना भी अपनी डायरी को कभी इधर पलट रही हैं, कभी उधर, और लगता है कि अब इन्हें कोई ना कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ अशार मिल ही गए हैं। अगर जब मिल गए तो हमें बताइएगा, दस्तक दीजिएगा, हम दरवाजा खोलेंगे और फिर आप आके सुना सकेंगी।
1: चले जी
0: जी
1: जी, अर्ज करते हैं, आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो।
0: आहा,
1: आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो।
0: ये कस्टमर्स के लिए तो नहीं है।
1: साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो।
0: जब इंसान, जब एक इंसान दुकान कर रहा हो तो यूं ही लगता है ना, जो दुकानदार है ये उनकी गजल है कि आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम
1: सही हो। बात है, कम से कम आए और खरीद के भी लेके जाए।
0: जी जी
1: जी, जब शाह कोई हाथ लगाए ही चमन में,
0: जब शाह कोई हाथ लगाते ही चमन में,
1: शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो।
0: आहा, क्या कहने।
1: संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का,
0: संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का,
1: झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर,
0: आहा,
1: ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर, नदी कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो।
0: बहुत खूब।
1: जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, चुपचाप सी सो जाए तो लगता है कि तुम हो।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: चलें अब आप कुछ सुनाएं।
0: जी यूं करते हैं कि सुनने वालों के लिए एक खूबसूरत सा गीत जो है वो पेश करते हैं, और साथ ही अगर हमारे कोई भी समय आ गए तो उन गीत रोक देंगे और उनकी कॉल हम लेंगे।

0: और समीन, आप सभी सुनने वालों का शुक्रिया अदा करेंगे। देखते ही देखते प्रोग्राम बिल्कुल अपने अख्ताम की जानब रवा दवा। आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप सभी आते हैं तो इस महफिल को चार चांद लगते हैं। आप बताइएगा सना, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा, मुझे तो हमेशा आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, तभी तो हमने आपको ज्वाइन किया है।
0: बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगली महफिल तक अपने सुनने वालों से इजाजत चाहेंगे। साकिया रंज न कर जाग उठेगी महफिल, साकिया रंज न कर जाग उठेगी महफिल, और कुछ देर उठा रखते हैं पीना अपना।
1: क्या बात है।
0: और इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज। KOGK, Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is... Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: Sheffield Mellor CIC presents DesiFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल।

0: में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग।
10: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: 13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents Desi Fest, Sheffield Mellor 2026.

0: Join us at Firth Park Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park Sheffield. We'll see you there.
1: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
2: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
1: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
2: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
1: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
2: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुक कीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
4: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world, Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आप।
5: ये इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL।

0: नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडो सी यॉर्कशायर।
1: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
2: बालियां अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काकी की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
2: आपकी शान
1: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, PD95ER 01274491442,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
3: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
2: सोफी ज्वेलर्स?
3: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
2: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
2: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
2: बस ट्रक फोकलिफ्ट
0: टैक्सी लाइसेंस,
2: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
2: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
1: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
2: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, ट्रैफिक लाइट्स,
0: ओल्ड मिस्टर एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की
8: नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस वाज यॉर्कशायर।
7: जो पी थाए,
9: जेवर वो पाकिस्तान ज्वेलर से,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन,
9: बालियां, अंगूठियां, हार,
7: दुल्हन सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की।

0: आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
1: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स?
1: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
0: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping, featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
13: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.